ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की तिथि 21, तदनुसार 11 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 होने वाले हैं। अब शुरू होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार बुलेटिन।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will participate today in Somnath Amritpur 2026, marking 75 years of the reconstruction of the first Jyotirling, Somnath Mahadev Temple. Mr. Modi will offer prayers to Lord Somnath, perform the Kumbhabhishek ritual and later address a public gathering. A roadshow has also been organized. On this occasion, Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi will also remain present. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya has invited Chief Minister-elect Himanta Biswa Sarma to form a new government in the state, paving the way for the NDA's third consecutive term in Assam. After being unanimously elected leader of the BJP-led NDA's legislature party, Mr. Sarma, along with alliance leaders, met the governor at Lok Bhavan and formally staked claim to form the government. Mr. Acharya will administer the oath of office and secrecy to Mr. Sarma and members of the new Council of Ministers tomorrow. The swearing-in ceremony will be held at the Veterinary College playground in Khanapara and is expected to be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Naveen, among others. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will chair a meeting of the Council of Ministers at the State Secretariat Nabanna today. Portfolios are expected to be distributed among the five ministers who took the oath of office and secrecy along with the chief minister on Saturday at the Brigade Parade Ground. The new cabinet is expected to discuss the BJP's electoral promises. Newly elected MLAs are also expected to attend the meetings. A guard of honour will be presented to Chief Minister Suvendu Adhikari at around 11 a.m. today, following which the cabinet meeting will take place. India now ranks third globally in installed renewable energy capacity. A new report by Morgan Stanley says India's renewable energy transition will help reduce external dependence, but its success will depend on how quickly the country localizes critical segments such as solar cells, wafers and polysilicon. According to data from the Ministry of New and Renewable Energy, domestic solar module capacity has nearly doubled from 38 gigawatts in March 2024 to 74 gigawatts in March 2025. Solar cell capacity has also increased from 9 gigawatts to 25 gigawatts. Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav will release two cheetahs into the wild at Kuno National Park in the Gwalior Chambal region today. Prime Minister Narendra Modi launched Project Cheetah in September 2022 by introducing eight cheetahs brought from Namibia into Kuno National Park. It was the world's first intercontinental big cat relocation project. This was followed by the arrival of 12 cheetahs from South Africa in 2023 and nine more from Botswana in February this year. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by India Meteorological Department amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas, tomorrow and day after tomorrow. Taking cognizance of the bad weather, Garhwal Divisional Commissioner Vinay Shankar Pandey has appealed to the devotees and tourists that they must get the latest information about the weather during their journey and plan it with utmost care. The Indian Embassy in Madrid, Spain has said that two Indian nationals aboard a hantavirus-hit cruise ship are safe and asymptomatic. The Dutch-flagged vessel MV Hondius, carrying around 150 people, including two Indians, arrived in Spain yesterday and anchored off the Canary Islands following the outbreak. According to the embassy, passengers disembarked in line with protocols issued by the World Health Organization and Spanish authorities. The Spanish National Center for Emergency Monitoring and Coordination said the two Indians who were working as crew members have been evacuated to the Netherlands, where they will undergo quarantine under health safety protocols. In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru defeated Mumbai Indians by two wickets in a last over thriller in Raipur last night. Put into bat first, Mumbai Indians posted 166 for 7 in 20 overs, riding on Tilak Varma's 57 off 42 balls. Today, Punjab Kings will face Delhi Capitals at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। आज सुनिए वार्ता अदरक की खेती।

कार्यक्रम खेती की बातें सुनने वाले आप सभी किसान भाई बहनों को मेरा जोहार। श्रोताओ, आज हम बात करेंगे अदरक की खेती और बुआई के विषय में। अदरक की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु अच्छी होती है। मई जून का महीना इसकी बुआई के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अदरक की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी पीएच मान 6.0 से 6.5 सबसे अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, अदरक की खेती के लिए खेत की 3 से 4 बार गहरी जुताई करें। मिट्टी में अच्छी मात्रा में गोबर की खाद मिलाएं। 1 मीटर चौड़े और 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे बेड तैयार करें। बुआई से पहले अदरक के कंद को मैनकोजेब के घोल में 30 मिनट तक डुबोकर छाया में सुखाएं। ऐसा करने से फंगस से बचाव होता है। मिट्टी में 30x25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में कंद लगाएं। उसके बाद गोबर की खाद और मिट्टी से खेत को ढक दें। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर सिंचाई करें। बुआई के 45 दिन, 90 दिन और 120 दिनों के बाद खाद और यूरिया का उपयोग करें। किसान भाइयों, अदरक की फसल के लिए मल्चिंग बहुत जरूरी है। पूरे खेत में सूखी घास और पत्तों की परत बिछाएं। ऐसा करने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और इससे खरपतवार भी कम होता है। किसान भाइयों, अदरक की फसल 8 से 9 महीने में तैयार हो जाती है। जब पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगे तो समझ लें अदरक की फसल निकालने के लिए तैयार है। 1 एकड़ की जमीन से लगभग 100 क्विंटल अदरक का उत्पादन मिल सकता है। अदरक की खेती एक अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय है। 1 एकड़ जमीन से लगभग 100 क्विंटल से अधिक उत्पादन पाया जा सकता है। किसान भाइयों, अदरक की खेती के लिए प्रति एकड़ खेत में लगभग 1.5 लाख रुपये की लागत आ सकती है। बाजार दर पर किसान 1 एकड़ की खेती से 2.5 लाख की कमाई कर सकते हैं, जिसमें शुद्ध मुनाफा 1 लाख से अधिक हो सकता है। किसान भाइयों, इसके साथ ही खेती की बातें अब यहीं संपन्न

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है चिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। ये था आज का चिंतन।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं देश वंदना।

आवाजों में आप सुन रहे थे भजन। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है रामचरितमानस। कलाकार हैं सुरेश वाडकर, संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें मोर पंख पर बनी आंख की नकली आकृतियों के समान हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं वो प्राणी मृतक के समान है। जिस जिह्वा से श्री राम का गुणगान नहीं हुआ वो मेढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया। गिरिराज किशोरी आदर पूर्वक श्रद्धानत हो पति के वचन सुनने लगी।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंता बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के

कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 से आप सुनेगा जन प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम। जरा सुनिए, 7:20 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम में। आज आप सुनेगा भोजपुरी में गीत, कलाकार होंगी मीनू शाही। बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि सुनेगा 7:35 से। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा आधुनिक बांग्ला गान, कलाकार होंगे किशोर कुमार। दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा सुनेगा 7:50 से। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा डॉक्टर सुखविंदर सिंह की भेंट वार्ता, साइटिका कारण और निदान, इनसे बातचीत करेंगे राजेश कुमार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले सुबह 8 बजे से सुनेगा समाचार प्रभात। 8:15 का समय होगा मॉर्निंग न्यूज का। 8:30 से सुनेगा प्रादेशिक समाचार जिसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। फिल्म संगीत सुनेगा 8:45 से। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना सुनेगा 9:05 से। 9:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा पंडित पन्ना लाल घोष का बांसुरी वादन, राग होगा तोड़ी।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले सुबह 10 बजे से सुनिएगा हिंदी में समाचार, 10:05 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का, 10:10 से सुनेगा विश्व दर्पण, फिल्म संगीत सुनेगा 10:20 से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले दिन में 11 बजे से सुनेगा हिंदी में समाचार, 11:05 का समय होगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अगले दिन में 12 बजे से सुनने का हिंदी में समाचार। 12:05 का समय होगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भावगीत का।

12:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम में आज आप सुनेगा उस्ताद नजाकत अली खान और उस्ताद सलामत अली खान का ख्याल गायन, राग होगा पूर्वी, और फिर सुनेगा पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन, राग होगा गौड़ सारंग, पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी वादन सुनेगा, राग होगा सारंग। ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी।

0: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है जन प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम, जरा सुनिए।
1: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए।
2: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
1: जरा सुनिए,
3: सुप्रभात। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जिंदगी की असली खूबसूरती स्वस्थ मुस्कान और उम्मीद में छिपी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन का हर दिन एक नई लड़ाई लेकर आता है। ऐसी ही एक गंभीर बीमारी है थैलेसीमिया। हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़े और ये संदेश पहुंच सके कि सही जानकारी, समय पर जांच और नियमित उपचार से इस बीमारी से लड़ाई आसान बनाई जा सकती है। थैलेसीमिया कोई छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है श्रोताओं, बल्कि ये एक अनुवांशिक रक्त रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकता है। इसलिए जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। श्रोताओं, अगर विवाह से पहले थैलेसीमिया टेस्ट को हम अपनी आदत बना लें तो आने वाली पीढ़ियों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। और जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे प्यार, हमारे सहयोग और समय समय पर रक्तदान की। पिछले दिनों थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को सहायता करने वाली संस्था द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, जहां शहर के चर्चित संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तो चलिए इस कार्यक्रम के जरिए जानते हैं समाज सेवा से जुड़ी श्रीमती रूबी बोधनवाला के विचार।
4: बहुत दूर से हम लोग चल चल के आते थे अपने बच्चे को लेके। सब मम्मी बहुत थक जाती थी सारा दिन धूप में चल के, सुबह को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। हम लोग बहुत सोच के हम लोग उस वार्ड को एक चाइल्ड फ्रेंडली और एक वार्म्थ से पेंट किए, वॉल्स, टॉयज ले आए, साइकिल्स ले आए, सब कुछ। सो दैट व्हाइल ट्रांसफ्यूजन हो रहा था, बच्चा टीवी देख सकता था, पजल्स के साथ खेल सकता था। और हम लोग एक बेड प्रोवाइड किए थे मम्मी को रेस्ट लेने के लिए, तो वो पूरा दिन मम्मी सो जाती थी। आप पेरेंट्स जिस तरह का हौसला आप लोग रखते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं, जितना भी कर पाए आपकी मदद के लिए, इट्स नॉट इनफ टू सी द काइंड ऑफ हौसला यू होल्ड व्हेन यू स्माइल एट योर चाइल्ड।
3: इस अवसर पर जेमी पॉल

0: एमडी स्वास्तिका बासु के विचार।
1: हमारा हार्ट इज फुल और सही में ये जो हौसला बच्चों ने दिखाया है और जो हर दिन का जो ये इनका संघर्ष है जो ये करते हैं उसको देख के एक्चुअली लगता है कि यू नो वी शुड ऑल हैव ग्रेटिट्यूड इन आवर लाइफ। हमें भगवान को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और इन बच्चों से कहना चाहिए कि हम सब आपके साथ। I on behalf of Jamie Ball, I really appreciate and thank you that आप लोग इन बच्चों के साथ हैं और कोई भी सहायता के लिए हम लोग आगे बढ़ के करेंगे। सारे का जो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे का जो थीम है हिडन नो मोर, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज जागरूकता अवेयरनेस से ही ये जेनेटिक जो डिसऑर्डर है जो बहुत बच्चों में है, तो अगर ये डायग्नोसिस हो जाए राइट टाइम में, इवन वन डायग्नोसिस एट द राइट टाइम कैन हेल्प अ चाइल्ड। एंड ऑफ कोर्स जागरूक नागरिक के तहत अगर हम ये ब्लड डोनेशन करें।
0: इस अवसर पर बच्चों ने एक बहुत ही भावनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, आइए इसकी एक झलक सुनते हैं।

क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक छोटी सी सांस किसी की पूरी जिंदगी हो सकती है? ये कहानी है उन बच्चों की जो जीते तो हैं पर हर दिन किसी और के ब्लड के सहारे। कुछ बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं पर उनकी सांसें उतनी तेज साथ नहीं दे पाती और तब एक सिंपल सी कहानी एक संघर्ष बन जाती है।

0: और अब जानते हैं जिसको के एमडी अतुल भटनागर ने क्या कहा।
1: कहीं ना कहीं हमें और प्रयास करना होगा कि इसकी जागरूकता ज्यादा से ज्यादा फैलाए कि जब अंधेरा होता है, सनसेट होता है, तो सूर्योदय भी होता है। समय कठिन हो सकता है बट हौसला रहे, सबको उम्मीद ये होनी चाहिए कि सूर्योदय फिर होगा। आप सब विश्वास रखिए, आज ये लगता है कि नहीं इसकी कोई और इसका कोई इलाज नहीं है, बट इतना सारा रिसर्च चल रहा है, किसी ना किसी दिन इसका इलाज भी आएगा। और तब तक हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि कैसे हम अपने हौसले को मजबूत रखें, सब मिलकर कोशिश करें कि हम किस बीमारी से जितना प्रिवेंशन कर सके करें, और साथ ही साथ जो आज हम सब खड़े हैं इस बीमारी के साथ भी, उसको हम सबको हौसला देना है और हौसला बनाना है और दूसरों को बताना है। मेरा सारा अपने जो बच्चे हैं थैलेसीमिया वॉरियर्स, उनसे ये कहना है कि आप सब अपने हौसले को बुलंद रखिए, आपको देख के बाकी लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलेगा और जागरूकता भी आएगी।
0: इस बीमारी में बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे डॉक्टर्स। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मानंद हॉस्पिटल के डायरेक्टर अरविंद आर्या के विचार।
2: एट प्रेजेंट आई एम एसोसिएटेड विद ब्रह्मानंदम हॉस्पिटल सोनारी, और हम लोगों ने एक हेल्प एक्सटेंड किया है। हम इनके पेशेंट्स थैलेसीमिया पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं डेली 3-4, एंड वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट। हम लोगों ने कुछ बेड्स उनके लिए रिजर्व कर दिया है। वी आर ऑलवेज विद यू, थैंक यू फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी।
0: और अब आइए जानते हैं थैलेसीमिया

0: से पीड़ित बच्चों की भावनाएं, उनके विचार।
1: हाँ, तुम्हारा नाम क्या है?
2: मेरा नाम नीतू कुमारी महतो है और मैं टेलको घोड़ाबंदा में रहती हूँ और मुझे पिछले 23 साल से थैलेसीमिया है।
1: अच्छा, आपकी उम्र क्या है?
2: अभी मेरी उम्र 25 है।
1: किस तरह की समस्या आ रही थी आपको?
2: थैलेसीमिया एक्चुअली एक ब्लड डिजीज़ है जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं बनते ही नहीं हैं, और अगर बनते भी हैं तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो इसको, ये आपका आनुवंशिक बीमारी होता है जो माता पिता या घर में किसी को हो तो ही आता है, अदरवाइज ये नहीं होता।
1: आपकी जानकारी में आपके माता पिता में से किसी को था ये?
2: माता पिता अगर दोनों कैरियर है तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर होता है। तो मेरे माता पिता दोनों कैरियर है तो मैं थैलेसीमिया मेजर हूँ।
1: आगे क्या बताना चाहेंगे श्रोताओं?
2: आगे मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे यूथ कपल्स हैं या यूथ कपल्स आने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, तो प्लीज़ एक बार थैलेसीमिया टेस्ट करवा लें, ना कि अपनी कुंडली मिलवाएं।
1: आप अपना नाम बताइए।
3: अनिश कुमार महतो है।
1: हाँ, आपकी क्या उम्र होगी?
3: 24 साल।
1: अच्छा, आप थैलेसीमिया से पीड़ित है, आपको कब पता चला?
3: बचपन 8 महीना से।
1: अच्छा, 8 महीने की उम्र से आपके माता पिता को पता चला कि आप थैलेसीमिया से पीड़ित है।
3: हाँ।
1: आपको उस समय समझ नहीं थी, तो जब आप बड़े हुए तो ऐसा क्या आपको समस्या हो रहा था शरीर में?
3: शरीर में वही कमजोरी होना, जैसे खाने मन नहीं करता है, तो कभी बाहर चलने में मन करता था, खेलने नहीं मन करता था, उससे वही समस्या था। जब ब्लड चढ़ता है उससे ठीक लगता। देखिए मैम, इच्छा तो थी बट शरीर प्रॉब्लम थी, साथ नहीं दे रहा था। अभी हाल ही में ठंडा के समय थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो गया, पैर सब में पूरा चल नहीं पाते थे, लगभग 3 महीना बेड रेस्ट में थे।
1: अच्छा, कितने महीने के अंतराल में आप लोग का जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता है?
3: महीने में दो बार। स्प्लीन ऑपरेशन हुआ है इस कारण से महीने में 2 ठो लेते हैं। अगर स्प्लीन जिनका है तो वो उन लोगों का थोड़ा ज़्यादा लगता है महीना में।
1: अच्छा।
3: सर्दी बुखार होने से एक्स्ट्रा बढ़ जाता है।
1: अभी आपका स्वास्थ्य कैसा?
3: अभी एकदम ओके है।
1: ओके है।
0: और अब थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के माता पिता से ली गई बातचीत के कुछ अंश आपको सुनवाते हैं।
1: आपका नाम?
4: आशुतोष माथो।
1: तो आप खुद थैलेसीमिया पीड़ित है या आपका बच्चा?
4: मेरा बच्चा है, मेरा बेटी का थैलेसीमिया 9 महीना से ब्लड चढ़ रहा है।
1: और अभी वो कितने साल की है?
4: अभी 8 साल का।
1: कैसे पता चला कि उसको थैलेसीमिया?
4: जब बुखार आ रहा था, जब डॉक्टर को दिखा था, दवा खिला था, बुखार छूटता था, फिर बुखार आ जाता था, ब्लड डाउन हो जाता, फिर डॉक्टर को दिखाया तो बोलता इसको ब्लड चढ़ाओ। पुरुलिया में ट्रीटमेंट किया था, थैलेसीमिया निकला। पहले तो खून का पैसा लगता था, कभी मैडम का अंडर में आया, मैंने ब्लड बैंक से भी कार्ड बनाया, कभी पैसा नहीं मिला लगता है।
1: ये बोला जाता है कि अनुमानसिक होता है, आप दोनों में से कोई थैलेसीमिया?
4: दोनों ही।
1: मतलब एक जागरूकता की उस समय कमी थी कि शादी के पहले बोलते हैं कि ब्लड चेक करना चाहिए।
4: तो थैलेसीमिया उनका तो हमको कुछ पता ही नहीं था।
1: लेकिन अभी एक आर्थिक बोझ आप पे बढ़ता है क्योंकि दवा खाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है।
4: ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना महीना में करता है, फिर दवाई कैल्पार डेफ्रिजेट कैल्शियम सब चलता है
1: ताकि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़े।
4: हाँ।
1: अभी कोई तकलीफ है बच्चे को?
4: तकलीफ तो अभी नहीं है, फिलहाल तो ब्लड चढ़ता ही है।
1: तो बच्चा खेलता कूदता सही?
4: हाँ,
1: तरीके
4: सब,
1: से
4: सब
1: पढ़ाई लिखाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग आशा करेंगे कि जल्द से जल्द उन लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो।
4: हाँ।

तो श्रोताओं, आज के इस अंक में आपने जाना क्या है थैलेसीमिया और कैसे इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। अब इस कार्यक्रम से

0: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। लोकगीत का कार्यक्रम सुनेगा बस इस संदेश के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: प्रस्तुत है लोकगीत। लोकगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मीनू शाही की आवाज में भोजपुरी में गीत।

0: मीनू शाही की आवाज में आप सुन रहे थे भोजपुरी में गीत। इसी के साथ लोकगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरंजली। कार्यक्रम में ये सुनते हैं आधुनिक बांग्ला गान। कलाकार हैं किशोर कुमार।
1: एक पलकेर एकटू देखा आरो एकटू बेशी होले क्षति की।
2: एक पलकेर

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे आधुनिक बांग्ला गान। इसी के साथ बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह रेखराज की भेंट वार्ता, साइटिका, कारण और निदान। इनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें साइटिका का पेन हो रहा है। ये साइटिका का दर्द क्या है, या फिर यूं कहें कि साइटिका है क्या, इसके क्या लक्षण होते हैं और क्यों ये पेन होता है, इन सारी बातों को बताने के लिए स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह लेखराज। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को सबसे पहले आप ये जानकारी दीजिए कि साइटिका है क्या।
1: साइटिका जो है ये साइटिक नर्व से बना शब्द है
0: जी,
1: जिसमें कि साइटिक नर्व में सूजन आने की वजह से दर्द होने लगता है।
0: अच्छा।
1: और साइटिक नर्व जो है ये कमर से इसकी उत्पत्ति होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड है।
0: अच्छा।
1: इसमें लंबर रीजन और स्पाइनल जो रीजन सैक्रल रीजन है, तो L3 से L5 तक और सैक्रल रीजन में 1-3 तक इसकी उत्पत्ति होती है। और कई कारण हैं जिनकी वजह से इस पर दबाव बनता है नर्व्स पर, और ये दबाव जब शुरू होता है तो दर्द हमें शुरू होती है कमर के निचले हिस्से से और पैर के पिछले हिस्से से होती हुई ये नीचे तक जाती है। तो इसमें दर्द के अलावा एक झिनझिनी सी महसूस होती है जब दबाव पड़ता है, तो इस तरह की जो समस्या है इसको साइटिका नाम दिया गया।
0: ये कितना खतरनाक हो सकता है?
1: इसमें जीवन पर इसका तो ऐसा कोई असर आप नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह की दर्द और तकलीफ मरीज महसूस करता है तो उसके लिए चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इससे दिक्कत बहुत ज्यादा है पेशेंट।
0: इसका होने का मुख्य कारण कुछ है, किन कारणों से ये होता है?
1: इसके कारणों की बात करें तो जो इसमें स्पाइनल कॉर्ड से मैंने बताया कि इसकी उत्पत्ति जो हो रही है वर्टिब्रल कॉलम के बीच से जो नसें निकली हुई हैं
0: जी,
1: तो उन पर दबाव पड़ता है। तो ये दबाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि दो वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का कई बार हर्निएशन होता है या प्रोलैप्स होता है, जो अपनी जगह से खिसक जाती है बाहर की तरफ आ जाती है, या किसी कारण से जो वर्टिब्रा है वो बढ़ जाता है, या उस डिस्क में डिजनरेशन की स्थिति होती है। इन सब कारणों से या स्पाइनल कॉर्ड जो है इसमें किसी तरह की स्टेनोसिस या नैरोइंग होती है, कारण है जो कि नर्व पर दबाव डालते हैं। कभी भारी सामान कुछ उठाया उसके वजह से भी जो स्पाइनल कॉर्ड है और वर्टिब्रल कॉलम इसका तालमेल अगर कुछ गड़बड़ाता है जिसके वजह से ये दिक्कत आ सकती है।
0: बचने के क्या उपाय हो सकते हैं?
1: बचने के उपायों में एक्सरसाइज, जिससे कि इसकी आप जो पोजीशन गड़बड़ाई है वो सही हो
0: जी।
1: इस अवस्था में भार सामान ना उठाएं, जहां पर हम सोते हैं वो ज्यादा दबने वाली जगह ना हो, जिससे कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी रह सके। और इसके उपचार में जैसे भार भी लगाया जाता है, ट्रैक्शन जो है ये भी फायदा करता है, जिससे कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो अपनी अवस्था में रहे। और यदि डिस्क प्रोलैप्स हर्निएशन इस तरह की जो बीमारी है तो इसमें सर्जिकल उपचार की भी आवश्यकता आ सकती है। और इसको जांचने का बहुत सीधा तरीका है कि मरीज जो है सीधे लेट जाए और लेटने के बाद अपने पैर को सीधा ऊपर की तरफ उठाए। यदि जिस तरफ की साइटिक

0: की दर्द जो है किसी एक तरफ हो सकती है, कोई
1: अच्छा
0: एक पैर में दर्द अधिक हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये साइटिका की हो सकती है। तो उस पैर को जब सीधे रखकर ऊपर की ओर उठाते हैं तो उसमें दर्द बढ़ती है, क्योंकि उससे साइटिक नर्व पर दबाव बढ़ने लगता है। तो इस तरह से भी इसकी पहचान की जाती है कि साइटिक नर्व पर कंप्रेशन है। तो ये कंप्रेशन यदि साधारण है तो एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ट्रैक्शन, बेड रेस्ट, ये सब उपायों से ठीक किया जा सकता है।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना कि साइटिका का जो दर्द होता है इससे हम काफी हद तक बच सकते हैं। अपने दिनचर्या में थोड़े बदलाव लाने की जरूरत है और डॉक्टर साहब ने जैसा बताया उस पे ध्यान दीजिए और उस पे अमल कीजिए तो साइटिका के दर्द से आपको निजात जरूर मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

साइटिका कारण और निदान, इसी विषय पर आप सुन रहे थे डॉक्टर सुखविंदर सिंह रेखराज की भेंट वार्ता। इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
6: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
6: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
8: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 296

0: 0445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात और फिर 8:15 से मॉर्निंग न्यूज। 8:30 से हम आपको आकाशवाणी के रांची केंद्र लिए चलेंगे, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे, वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल है। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में NDA के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले NDA विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। NDA में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
7: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
8: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान

0: वाहक पुत्र चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ है अर्जुन शर्मा।
2: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलियश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकांगवा, मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112301-7171 और 0112371-7106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
3: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदे, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, TVK प्रमुख विजय ने ली CM की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक

नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चार धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और गैस बचाने की अपील की। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एक साल तक सोना नहीं खरीदने का किया आग्रह। केंद्र सरकार ने रांची नगर निगम के जीआईएस आधारित एसेट मैपिंग कार्य की सराहना की। झारखंड को 5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खान विभाग की सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ आज होगी बैठक। लातेहार रेलवे स्टेशन पर रांची नई दिल्ली दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव का हुआ शुभारंभ। स्थानीय यात्रियों को मिलेगी सीधी रेल सुविधा। और संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने जीता स्वर्ण पदक। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान पश्चिम एशिया युद्ध से उत्पन्न वैश्विक संकट में पेट्रोल, गैस और डीजल के इस्तेमाल पर संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि पश्चिम एशिया युद्ध के असर को भी कम किया जा सकेगा। उन्होंने कल हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि आज हमें मीटिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की अधिक जरूरत है।
1: वैश्विक संकट के इस समय में कुछ संकल्प लेने होंगे। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, और भी लोगों को साथ बिठा लें।
0: प्रधानमंत्री ने मौजूदा संकट को देखते हुए विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है।
1: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो सोना नहीं खरीदेंगे।
0: रांची नगर निगम ने शहरी विकास और डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नगर निगम द्वारा किए गए जीआईएस आधारित एसेट मैपिंग कार्य के कारण केंद्र सरकार ने झारखंड को 5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी है। बता दें कि रांची नगर निगम ने सभी शहरी परिसंपत्तियों की डिजिटल मैपिंग का कार्य पूरा किया है। इसमें नगर निगम की जमीन, भवन, बाजार, कार्यालय, बस टर्मिनल, सामुदायिक भवन और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को जीआईएस प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से दर्ज और मैप किया गया। प्रदेश भाजपा के आह्वान पर सभी जिलों में पानी और बिजली संकट को लेकर 12 मई को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। इसे लेकर विभिन्न जिलों में पार्टी पदाधिकारियों की आयोजित बैठक में दिशा निर्देश जारी किया गया। रांची में आयोजित बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदर्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की। श्री मरांडी ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने को लेकर मार्गदर्शन भी दिया। झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खान विभाग आज सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक करेगा। बालू घाटों का संचालन लंबित रहने और अवैध कारोबार बढ़ने की शिकायतों के मद्देनजर खान सचिव अरवा राजकमल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाई है। बैठक में जिला खनन पदाधिकारियों, बीडीओ और सफल बोलीदाताओं को भी शामिल होने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य के 16 जिलों में 229 बालू घाटों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक संचालन शुरू नहीं हो पाया है। सांसद कालीचरण सिंह ने कल लातेहार रेलवे स्टेशन पर रांची नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव का शुभारंभ किया। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार को लातेहार स्टेशन पर रुकेगी, जबकि नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव प्रत्येक शनिवार को होगा। इस सुविधा से लातेहार और आसपास के यात्रियों को राजधानी एक्सप्रेस से सफर करने में सहूलियत मिलेगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार xhandle@ar

0: न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में पारदर्शिता लाने और केवल पात्र महिलाओं को लाभ देने के लिए भौतिक सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत आज से 18 मई तक पंचायत और वार्ड स्तर पर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 19 से 24 मई तक रिपोर्ट संकलन और अपात्र लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। 29 मई तक आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी जाएगी। खूंटी पुलिस प्रशासन ने पंजाब के जालंधर में 1.5 वर्ष से बंधुआ मजदूर बनाकर रखे गए सनिका पूर्ति और उसके परिवार को सकुशल मुक्त करा लिया है। इस बचाव अभियान में समाजसेवी लक्ष्मी बाखला का सहयोग रहा। खूंटी महिला थाना प्रभारी फूलमनी टोप्पो ने बताया कि सनिका पूर्ति को जालंधर में बंधक बनाकर मजदूरी कराई जा रही थी।
1: ये लोग 1.5 साल पहले जलंधर में ये बंधुआ मजदूरी का काम कर रहे थे, लेकिन 1.5 साल के अंतर्गत उन्हें कभी भी छुट्टी नहीं मिलता था। जब भी ये छुट्टी के लिए बोलते थे तो उन्हें नकार दिया जाता था। पुलिस अधीक्षक महोदय खुटी के निर्देश अनुसार कलजीत सिंह के घर से रेस्क्यू किए।
0: झारखंड सीआईडी ने साइबर ठगी के मामले में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आरोपी ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देकर 8.52 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। सीआईडी के अनुसार आरोपी लोगों को फर्जी वेबसाइट पर नकली मुनाफा दिखाकर निवेश के काम पर नाम पर रकम जमा करवाता था। मौसम विभाग ने झारखंड में मई के महीने में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है।
2: इस बार जो मई के महीने का जो प्रेडिक्शन आया है उसमें जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है और जो बारिश है वो सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। तो ओवरऑल जैसे थोड़ा सा राहत की खबर है झारखंड वासियों के लिए कि बीच बीच में आपको थंडर एक्टिविटी के साथ में बारिश देखने को मिलेगा और टेम्परेचर भी उससे थोड़ा मेंटेन रहेगा।
0: शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि झारखंड की दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम अनिल मोहोद ने मेजबान चीन को हराकर देश को गौरवान्वित किया है। अन्नपूर्णा देवी ने खिलाड़ियों की मेहनत, समर्पण और प्रतिभा को देश की बेटियों के लिए प्रेरणादायी बताया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने देशवासियों से प्रधानमंत्री की पेट्रोल, डीजल और गैस के उपयोग पर नियंत्रण रखने और 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने राज्य के 168 शहरी SHC में प्रसव की सुविधा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने रांची के कोकर स्थित खुरहा टोली से 18 माह की बच्ची के लापता होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है राज्य में नमक की कालाबाजारी पर सरकार सख्त होगी जांच। दैनिक जागरण ने 21 बच्चों के साथ मानव तस्कर की गिरफ्तारी की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और गैस बचाने की अपील की। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 1 साल तक सोना नहीं खरीदने का किया आग्रह। केंद्र सरकार ने रांची नगर निगम के GIS आधारित एसेट मैपिंग कार्य की सराहना की। झारखंड को 5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खान विभाग की सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ आज होगी बैठक। लातेहार रेलवे स्टेशन पर रांची नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव का हुआ शुभारंभ। स्थानीय यात्रियों को मिलेगी सीधी रेल सुविधा। और शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने जीता स्वर्ण पदक। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉव पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई ना कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक,
2: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर।

छोटी सी मुलाकात। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, रचना थी हसरत जयपुरी की और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

भ्रष्टाचार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की। गाने के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोग कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। सूजो में एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और राजस्थान में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। विभाग ने असम, मेघालय, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:05:30 हुए हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना लेकर हम हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में।

0: जलवायु और ऊर्जा, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है मानव द्वारा किया गया जीवाश्म ईंधन का उपयोग, जैसे कोयला, तेल और गैस। सबसे ज्यादा प्रभाव कोयला डालता है और गैस व तेल भी बहुत ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं। हालांकि अब विकासशील देशों का योगदान बढ़ रहा है, लेकिन अमीर देशों ने पहले कदम उठाने में देरी की है। आबादी के बढ़ने और आर्थिक विकास से ऊर्जा की मांग बढ़ती है। सौर, पवन, समुद्र, जैव और भूताप जैसे स्वच्छ ऊर्जा के बिना जलवायु लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, कई देश 2030 तक जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का दुगना से भी अधिक उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं, जो पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से अधिक है।
1: हेलो मनभावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

0: डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
0: हेलो डॉक्टर,
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरंजना। स्वीकार कीजिए श्वेता का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएम क्रीम के संगीतबद्ध के कुछ प्यारे से गाने। महेश भट्ट निर्देशित फिल्म क्रिमिनल के साथ एमएम क्रीम ने हिंदी फिल्मों में कदम रखा। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का गाना

अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे क्रिमिनल फिल्म का गीत। गाने के बोल लिखे इंदिवर ने और धुन बनाई MM क्रीम ने।

सुर फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं लक्की अली और सुनिधि चौहान की। गाने के बोल लिखे निदा फाजली ने और संगीतबद्ध किया एमएम क्रीम ने। श्रोताओं, एमएम क्रीम ने शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया और धुन उनके नाम से गहराई से जुड़ी हुई है। दरअसल कीरावानी कर्नाटक संगीत के एक राग का भी नाम है। कीरावानी कई उपनामों से जाने जाते हैं, जिनमें तेलुगु फिल्म के लिए एमएम कीरावानी, तमिल में मरगतमणि और हिंदी रचनाओं के लिए एमएम क्रीम शामिल है।

निलेश मिश्रा का लिखा हुआ गाना आप सुन रहे थे केके की आवाज में। फिल्म का नाम था रोग और इस गाने को संगीतबद्ध किया एमएम क्रीम ने। श्रोताओं, सुरजना कार्यक्रम का सफर आज यहीं तक। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे संगीतकार एमएम क्रीम के संगीतबद्ध किए कुछ बेहद ही खूबसूरत गाने। अब कार्यक्रम से श्वेता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: एफएमके 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनेगा बस थोड़ी देर में।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
3: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम।

आप सुन रहे थे पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी वादन राग था तोड़ी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार बुलेटिन।

0: खेतर सोमनाथ।
1: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का निरंतर ध्यान प्रतिभाओं को सशक्त बनाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय प्रगति तथा नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले समाधान विकसित करने पर केंद्रित है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार कई परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से नवाचार क्षमता का उपयोग करते हुए भारत के विकास को गति दे रहा है। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has urged people not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad, Mr. Modi called for a revival of work from home practices. The remarks come against the backdrop of record high fuel prices in many nations. The Prime Minister's appeal come at a time when global crude oil prices have surged from nearly $70 per barrel to around $126 per barrel due to escalating tensions in West Asia and disruptions around the Strait of Hormuz.
3: Ek zamana tha jab sankat aata tha to log desh hit mein sona daan de dete the. Aaj daan ki zarurat nahi hai lekin desh hit mein हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
2: The Prime Minister also appealed to citizens to rethink discretionary spending as the country faces economic pressure from rising global energy costs. PM Modi also asked citizens to reduce edible oil consumption and urged farmers to cut dependence on chemical fertilizers imported from abroad. Prime Minister Narendra Modi will participate today in Somnath Amrit Parv 2026, marking 75 years of the reconstruction of the first Jyotirling, Somnath Mahadev Temple. Mr. Modi will offer prayers to Lord Somnath, perform the Kumbhabhishek ritual and later address a public gathering. A roadshow has also been organized. On this occasion, Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi will also remain present. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel around 6 p.m. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya has invited Chief Minister-elect Himanta Biswa Sarma to form a new government in the state, paving the way for the NDA's third consecutive term in Assam. After being unanimously elected leader of the BJP-led NDA's legislature party, Mr. Sarma, along with alliance leaders, met the governor at Lok Bhavan and formally staked claim to form the government. Mr. Acharya will administer the oath of office and secrecy to Mr. Sarma and members of the new Council of Ministers tomorrow. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by India Meteorological Department amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas, tomorrow and day after tomorrow. US President Donald Trump has warned that the United States will target any Iranian trying to reach the country's highly enriched uranium, saying that the nuclear material is under constant surveillance by the US military. In a televised interview, Trump appeared to play down the significance of uranium, which is believed to be buried under the rubble of nuclear facilities remaining in Iran for now. Iran's highly enriched uranium is one of the major sticking points between Washington and Tehran in ceasefire negotiations to end the 10-week U.S.-Israel war on Iran. U.S. President Donald Trump will pay an official visit to China from May 13th to 15th at the invitation of Chinese President Xi Jinping. This will be the first visit to China by a U.S. president in almost 9 years. The visit comes in midst of a prolonged U.S.-Israel-Iran war crisis over the blockade of Strait of Hormuz, causing global energy crisis. Indian equity markets fell down today with benchmark indices declined 1% each in early trade after the U.S. and Iran failed to reach an agreement on a peace proposal related to the West Asia conflict. In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru defeated Mumbai Indians by 2 wickets in Raipur last night. Earlier in another fixture, Chennai Super Kings defeated Lucknow Super Giants by 5 wickets. Today, Punjab Kings will face Delhi Capitals at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
0: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। सऊदी अरब ने पड़ोसी खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की। हंता वायरस प्रभावित जहाज पर सवार 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित और उनमें संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सुजों में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने और स्थानीय उत्पादों की खरीद को वरीयता देने की अपील की।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए।
0: प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $126 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की, क्योंकि देश बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागतों से आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का भी आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
2: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
0: इस बीच सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत के क्षेत्रों और समुद्री सीमा को निशाना बनाकर किए गए ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है और खाड़ी देशों की सुरक्षा के प्रति फिर से समर्थन व्यक्त किया है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने कल कुवैत पर ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की थी। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये आतंकी हमले कुवैत की संप्रभुता का उल्लंघन और उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। ये राजनयिक प्रतिक्रिया कुवैत के रक्षा मंत्रालय की उस घोषणा के बाद आई है, जिसमें देश के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले शत्रु के कई ड्रोन देखे जाने की पुष्टि की गई थी। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है।

0: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन के मैड्रिड में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। स्पेन के राष्ट्रीय आपातकालीन निगरानी और समन्वय केंद्र ने कहा कि दोनों भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें नीदरलैंड्स भेज दिया गया है और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने कोस्टारिका के विदेश मंत्री मैनुअल तोवर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि बैठक के दौरान भारत कोस्टारिका द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत और कोस्टारिका बहुपक्षवाद, लोकतंत्र और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के मामले में समान मूल्यों को साझा करते हैं। रूस ने कहा है कि वो नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में रूसी सैनिक नाटो के समर्थन वाली सेना के साथ युद्ध लड़ रहे हैं और फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने मॉस्को के रेड स्क्वायर में विजय दिवस परेड के दौरान विशेष सैन्य अभियान में शामिल रूसी सैनिकों की भी प्रशंसा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। पिछले 9 वर्षों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन की यह पहली यात्रा होगी। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष लगातार जारी है। अमरीकी प्रशासन की प्रमुख उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने कहा कि ट्रंप बुधवार शाम को बीजिंग पहुंचेंगे। उन्होंने इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण बताया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
1: सुजो में एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल फाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने, 52 किलो वर्ग में 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकंगनवा, मई तेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
0: ईरान की जेल में बंद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को राजधानी तेहरान के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें जमानत पर रिहा कर उनकी सजा निलंबित कर दी गई है। 54 वर्षीय नरगिस ने 2023 में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और मृत्युदंड को समाप्त करने के अभियान के लिए जेल में रहते हुए ये पुरस्कार जीता था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। सऊदी अरब ने पड़ोसी खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की। हंता वायरस प्रभावित जहाज पर सवार 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित, उनमें संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए। और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सुजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
4: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फैंटम फिल्म का गाना। आवाज है शाहिद माल्या की, कौसर मुनीर के बोल हैं और धुन बनाई प्रीतम ने।

अब आइए सुनते हैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म का गीत। आवाज है शान की, गाने की बोली के इरशाद कामिल ने और तर्ज बनाई हिमेश रेशमिया ने।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 06572960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 06572960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,
2: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

अंतराल हुआ पूरा। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं इशकजादे फिल्म का गाना। आवाज है श्रेया घोषाल की, रचना है कौसर मुनीर की और धुन बनाई अमित त्रिवेदी ने।

आइए अब सुनते हैं शिव हरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और इला अरुण की। फिल्म का नाम है लम्हे।

0: लीजिए अब सुनिए किसना फिल्म का गाना। आवाजें हैं मधुश्री और उदित नारायण की, गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार एआर रहमान।
1: ऊंचा दर्जा देते हैं, जुदा रहकर प्यार की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। हर प्यार मिलन तो नहीं, जुदाई भी तो एक प्यार है।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं हमारी अधूरी कहानी फिल्म का गाना, आवाज़ है पापोन की। गाने के बोल लिखे रश्मि विराग ने और धुन बनाई मिथुन ने।

इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 MHz पर। दिन के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात के सोमनाथ में हैं। वे सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी।

0: पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगी। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री बाद में वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे शाम को सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में स्वागत कक्ष, नागरिक सुविधाएं, भोजन कक्ष और ई पुस्तकालय सहित विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनके बीच विभागों के बंटवारे की उम्मीद है। नए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की यह पहली के लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री हिमंता ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। नवनिर्वाचित तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलक वेत्री कड़गम के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार को 13 मई से पहले सदन में बहुमत साबित करना होगा। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भटियात उपमंडल में काकिरा लाहरू सड़क पर एक कार दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत हो गई। 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में से 5 गुजरात के निवासी थे, जबकि चालक मंडी जिले का रहने वाला था। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति में सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस दिन पोखरण परीक्षण क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किए गए थे, जो देश की आत्मनिर्भरता और सामरिक शक्ति की यात्रा में एक निर्णायक क्षण साबित हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है, जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़े शांति प्रस्ताव पर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता न होने के कारण घरेलू शेयर बाजार में आज 1.25% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1089 अंक गिरकर 76,240 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर।

0: हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
3: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
5: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। ये संबोधन प्रसारित किया जाएगा सोमनाथ प्रभाष पट्टन से

0: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं, विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्लयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घृष्मेशं च शिवाले एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं सुनिर्णं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbh Abhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbh Abhishek?
3: नमस्कार। आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्रघट, यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है, एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं, लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है मन का भी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
1: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
3: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगि गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति चिन्ह प्रतीक या लक्षण
1: जी,
3: अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
1: जी।
3: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं, और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है, इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the Somnath Mandir.
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का क्योंकि आस्था का प्रतीक है चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये जो एकता का प्रतीक भी है अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है हमारे इतिहास का हिस्सा है हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार चार करता रहा है राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है पुष्प सज्जा की गई है शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं डमरू की आकृति नंदी जी की आकृति त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन जो अलग अलग ये बनाएंगे वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था भव्य आयोजन था उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है
2: Yes, you are absolutely right, Neelam. And as you mentioned, that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine Prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. Manaha Shiva Sankalpa Mastu Shumukhascha Ekadan

विष्णु श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्ता मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तः।

0: पे ध्वजारोहण भी होगा और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
1: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं जैसे रूप मंडनम प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक पे जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व रज और तम, इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध और उसी से उत्पन्न आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम ये कारण यदि समझ सकें तो हम समझेंगे कि यह सत्व रज और तम ही है, इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है। इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है, मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर, सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है, अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायु सेना के जो यान हैं वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
0: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of Rs. 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also

0: उत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed. And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force. And now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी है वो भगवान शिव है।

0: पर उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं? अ, उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है। वहीं उ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
0: ध्वजारोहण, अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
2: जी।
0: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसीलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए, मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं। तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में? हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, प्राणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
2: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई है। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देख कर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्यूरेटेड।
2: जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: Yes, you are absolutely
3: right. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के
1: नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्यूरेटेड।

0: that the Somnath temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat.
1: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहे, पेयजल की सुविधाएं रहे और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाए, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है। और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं। और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए मंदिर। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार
2: लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

है जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते

0: हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
1: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी भी नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेके चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना है कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
0: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
1: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
0: जी,
1: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है, तो ये हाथ किसका अंग है, जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
0: जी।
1: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन, वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु है। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम 3 लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे स्वलोक कहा। तो इन 3 चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 3 प्रकार, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है दृष्टि रूप से, भगवान किस रूप से लेते हैं, दृष्टि रूप से, और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों, क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है, उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन 4 प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं
0: जी। तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आए और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
1: बिल्कुल, अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम

0: के वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंड मुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है। इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है
1: जी।
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं
1: जी। एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग। यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है
1: जी।
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपके सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं
1: जी। यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है
1: जी।
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले
1: जी।
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैन मेड है, हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा, इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है
1: जी। कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं, और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है, और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि, कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में। तो यह आदर रूप है,

0: दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहाँ पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है, इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयोभवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्व सुलभ हो जाता है जी। इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
1: यस, एंड वी आर ब्रिंगिंग टू यू द सोमनाथ अमृत महोत्सव 2026 दैट इज बीन हेल्ड एट द सोमनाथ टेम्पल एट प्रभास पाटन इन गुजरात, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: The Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honorable Chief Minister of Gujarat Sri Bhupendra Bhai Patel and the Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat Sri Harsha Sanghvi are also present, and the Honorable Prime Minister has performed a puja at the Sri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है, और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए, और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहना कर अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री
0: Minister in Gujarat government, Sri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan and another

0: 400 વર્ષ પછી ધ્વજારોહણ અને અંબાજી કોરિડોર તથા સોમનાથ તાલીમ સંગલ દ્વારા વિરાસત બી વિકાસ બી સાકાર કર્યું છે અને ફરીથી જયારે આજે ગુજરાતમાં આવ્યા છે ત્યારે ફરીથી એમનું સ્વાગત કરીને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત.
1: That was the welcome address by the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri. And he mentioned about the various development works that have been undertaken by the visionary leadership of the Prime Minister, Shri Narendra Modi. And he mentioned about the Kashi Vishwanath Corridor, the Sri Ambaji Temple in Gujarat, and also the Prana Pratishtha of the Sri Ram Lala Temple at Ayodhya. And this is the hallmark of the government of India. And the Honorable Prime Minister is now releasing the commemorative postal stamp. And also the stamp is being now released by the Honorable Prime Minister and the Chief Minister of Gujarat and the Deputy Chief Minister of Gujarat. It's a 5 rupee postage stamp depicting the Somnath Temple.
2: एक स्मारक डाक टिकट इस अवसर पर जारी किया गया. सोमनाथ मंदिर की तस्वीर उस पर बनी है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डाक पुस्तिका है उसे जारी किया और उपस्थित जनसमूह की ओर विशेष रूप से उसे दिखाया भी. और मंच के जो पार्श्व भाग में स्क्रीन है उस पर भी इसकी छवियां इस समय
1: होंगी. एंड नाउ नीलम, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द कमेमोरेटिव कॉइन. It is a 75 rupee denomination coin and it's very beautiful indeed. The two sides can be seen on this very special memento that the Honorable Prime Minister is displaying. And this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath Temple. It says Bharat, India, rupees 75 with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's the beautiful replica of the Somnath Temple.
2: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया. सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. सोमनाथ अमृत महोत्सव, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक. प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में.
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will now address the gathering.
3: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव. गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है. महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवाधिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लियते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें 1000 वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुछ सी प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर तो और परमाणु परीक्षण हुए, उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की ये आराधना, ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो, उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश पर प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्मा, अर्थात सृष्टि का हरेक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है। हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है। हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, ये संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो, साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ।

0: The Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
1: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति प्वाइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का उल्लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉ आशुतोष शर्मा के साथ और एसवाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन के आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।

0: समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का किया आग्रह। सुप्रीम कोर्ट ने टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके सहयोगी संजीव कुमार लाल को दी जमानत। गृह मंत्रालय के जनगणना संचालन निदेशालय ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियों को लेकर रांची नगर निगम के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर जेटेट भाषा विवाद पर पार्टी का मांगा मंतव्य। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य समेत 17 से अधिक पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
0: सुप्रीम कोर्ट ने टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। जमानत मिलने के बाद आलमगीर आलम लगभग 2 वर्ष के बाद जेल से बाहर आएंगे। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सहायक संजीव कुमार लाल के बेल को भी स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्रालय के जनगणना संचालन निदेशालय ने रांची नगर निगम की जनगणना 2027 की तैयारियों की सराहना की है। निदेशालय ने रांची नगर निगम की सक्रियता, कार्यशैली और समयबद्ध कार्य निष्पादन की प्रशंसा की है। झारखंड जनगणना संचालन के निदेशक प्रभात कुमार ने नगर आयुक्त सुशांत गौरव को पत्र भेजकर कहा कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियों में रांची नगर निगम ने राज्य भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि यह सराहना हमारे कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी गठित होने के साथ ही कांग्रेस संगठन में आंतरिक असंतोष जारी है। इस बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने पार्टी के अंदर उचित पद नहीं मिलने से नाराज नेताओं को मैसेज दिया है कि राजनीति में सबकी आकांक्षाओं को पूरा करना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए मुश्किल है।
2: आदमी की अपनी आकांक्षाएं रहती है, सबकी आकांक्षा किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। करने वाला तो कुछ लीडर ही रहते हैं जो इन निर्णयों को लेते हैं, नेता ही रहते हैं, उनके माथे पर यह आरोप आता है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी।
0: वहीं नवनियुक्त महासचिव और वरिष्ठ दलित नेता निरंजन पासवान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने संवेदनशीलता के साथ नई प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया है।
3: पार्टी ने विभिन्न प्रकार के सोच विचार के लोग हैं, प्रभारी जी ने जो सोच समझ सबको काम भी बांटा है। लोगों को थोड़ा समझना होगा, पार्टी के अंदर रहकर हमको कोई काम करना है तो काम करेंगे। अब इसमें कुछ लोग नाराज है तो उसके प्रति भी सोचा जाएगा।
0: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर जेटेट भाषा विवाद पर पार्टी का मंतव्य मांगा है। उन्होंने लिखा है कि भाषा विवाद समाज और राजनीतिक संगठनों से जुड़ा है, ऐसे में भोजपुरी, मगही और अंगिका को जेटेट नियमावली में शामिल करने पर पार्टी का निर्णय जानना आवश्यक है। झारखंड विधानसभा की प्राकलन समिति ने दुमका में विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समिति ने योजनाओं के पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर देते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मौके पर सभापति सहलिट्टी पारा, विधायक हेमलाल मुर्मू, बोरियो विधायक लुम्बिन हेमराम, घाटशिला विधायक समीर मोहंती और टुंडे विधायक मथुरा प्रसाद महतो सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा के झुमरी तलैया निवासी अंशुमान कुमार सिंह ने यूपीएससी की भारतीय वन सेवा की परीक्षा में देश भर में दूसरी रैंक हासिल की है। आकाशवाणी से बातचीत में अंशुमान कुमार ने अपनी सफलता के लिए अपनाई गई रणनीति साझा की।
4: इसके तीन फेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो अलग अलग फेजेस से अलग अलग स्ट्रेटजी है प्रिपेयर करने का। तो मेरी कुछ कोर स्ट्रेटजी जो तीनों फेज में मुझे काम आया, उसमें ये था कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखें एंड उनको मल्टीपल टाइम रिविजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करें। इंटरव्यू के लिए आप अपने पे काम करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें और आप मेंटली रिलैक्स रहें।
0: राजधानी रांची के कोकर स्थित खुरहा टोली से 18 माह की लापता बच्ची अदिति पांडे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रांची पुलिस ने बच्ची से जुड़ी जानकारी और सुराग देने वाले के लिए 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। जमशेदपुर पुलिस ने बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांधीनगर बस्ती में छापेमारी के दौरान संतोष सिंह को पकड़ा गया। एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि पूछताछ के बाद पुलिस ने उसकी दूसरी पत्नी और अन्य 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है।
5: विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन सभी के पास अलग अलग मात्रा में ब्राउन शुगर की पुड़िया मिली है, जिसकी बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 3.5 लाख रुपए है और 4 मोबाइल भी इनके पास मिले हैं। ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट सिंडिकेट है, इसमें कई अन्य लोग भी शामिल है जिनके विरुद्ध अभी अनुसंधान चल रहा है और आने वाले दिनों में उनको रेड करके गिरफ्तार किया जाएगा।
0: पलामू जिले की पुलिस ने आपराधिक गिरोह में शामिल लोगों की सूची तैयार की है। जिले के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सभी एसडीपीओ और थाना प्रभारी को निर्देश जारी किए गए हैं।
6: हमने अलग अलग कांड के तरीके से जो लिस्टिंग की है, जिसमें कि जैसे अपराध जैसे एक्सटॉर्शन हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, एनडीपीएस या अन्य जो भी अपराध है, इन सभी अपराधियों की एक लिस्ट बनाई है। इन अपराधियों के विरुद्ध में निगरानी प्रस्ताव खोलने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके पश्चात इनके खिलाफ पीसीसी की कार्रवाई, जिला बदर की कार्रवाई, थाना हाजिरी की कार्रवाई उसको स्टार्ट किया जाएगा।
0: कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रांची के बेड़ो प्रखंड के टेंगरिया में आयोजित 21 पढ़ा जेठ जत्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि जत्रा केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि आदिवासी समाज की परंपरा, सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 1000 की गिरावट के साथ 76,300 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 233 अंक गिरकर 23,942 पर आ गया है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,64,000 रुपए प्रति किलो है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक समेत कुल 17 पदक हासिल किए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। इधर भारत ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला के लिए भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम में झारखंड की संदीपा, सुगन, खिली, पुष्पा, श्रुति और नीलम का चयन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का किया आग्रह। सुप्रीम कोर्ट ने टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके सहयोगी संजीव कुमार लाल को दी जमानत। गृह मंत्रालय के जनगणना संचालन निदेशालय ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियों को लेकर रांची नगर निगम के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर जेटेट भाषा विवाद पर पार्टी का मांगा मंतव्य। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य समेत 17 से अधिक पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
5: 8700014242।
6: भारत में जल संकट के कारण 60% से अधिक लड़कियां हर महीने औसत 2 स्कूल नहीं जा पाती, जबकि राजस्थान में अनुपस्थिति 5 तक होती है, जो अक्सर लड़कों की तुलना में 2 से 10 गुना अधिक होती है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर और सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गाना आपके लिए फिल्म किला से। श्रीशा भागवतुल्ला की ये आवाज़ है, कैशर मुनीर की रचना है, धुन अमित त्रिवेदी का है।

शुशा भागवतुल्ला के गाया फिल्म किला का ये गीत आपने सुना। अब आइए सुनवाते हैं अगली रचना रश्मि विराग की। संगीत निर्देशन जीत गांगुली का है, आवाज़ अरिजीत सिंह की है। ये गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से।

और अब लीजिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना फिल्म स्त्री 2 से ही। विशाल और सचिन जिगर की आवाजें हैं इस गीत को, रचा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, धुन सचिन जिगर का है।

और अब लीजिए सुनाते हैं कार्यक्रम के आखिर में राज शेखर का लिखा ये गीत, संगीत विशाल मिश्रा का है। विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक की आवाज़ों में आइए सुनवाते हैं फिल्म सैयारा का ये गीत।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।

0: the headlines. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing. Also launches Ayushman Bharat health scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds. Projects growth at 6.6% in the current fiscal. And in IPL cricket, Punjab Kings to take on Delhi Capitals in Dharamshala this evening. Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. The Mahapuja marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbh Abhishek and flag hoisting ceremony. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the Somnath Temple stands as a beacon of unwavering faith, divinity and a sacred symbol of the country's eternal soul. He said, Somnath Amrit Parv is not just a festival to celebrate the past. It will be the country's inspiration for the next 1,000 years.
1: आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: The Prime Minister said Somnath reminds the people that any nation can remain strong for a long time only when it stays connected to its roots. He said no power in the world can make India bow down or suppress it. On National Technology Day, Prime Minister said on this day the first three nuclear tests were conducted and the country's scientists showcased India's capabilities to the entire world. He said these tests demonstrated to the world just how unwavering the country's political will truly is.
1: देश ने 11 मई को पहले तीन परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमता को दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था। लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held a 1 kilometer road show up to Hamirji Gohil Circle. Mr. Modi greeted the huge crowd gathered during the show. Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi also accompanied him during the roadshow. While proceeding to the Somnath Temple, the Prime Minister was led by the rhythmic beats of the Damru and greeted by deputies. The Prime Minister paid floral tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at his statue. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today said the state government has decided to transfer land to the Border Security Force, BSF, for erecting a fence along the Bangladesh border. The decisions were taken in the first cabinet meeting held today after the formation of the new government in West Bengal after the elections. The Chief Minister declared that within 45 days, land will be handed over to the Border Security Force. for fencing along the state's borders.
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग
3: इन आवर फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग टुडे वी हैव टेकन सिक्स मेजर डिसीजन इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ लैंड टू द बीएसएफ द लैंड विल बी ट्रांसफर्ड टू द एमएचए विद इन द नेक्स्ट 45 डेज वंस दिस इज अकम्प्लिश्ड द बीएसएफ विल कंप्लीट द बॉर्डर फेंसिंग एंड द ऑनगोइंग इशू ऑफ इलीगल इन्फिल्ट्रेशन विल बी रिजॉल्व विद इन अ शॉर्ट पीरियड
2: इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा
0: Mr. Rodhikari announced the implementation of the center's flagship Ayushman Bharat Health Scheme and several other schemes of the union government in the state. The cabinet also approved a proposal for a 5-year extension in the age limit of school job applicants. In the newly elected Legislative Assembly of Tamil Nadu today, more than 100 members were sworn in after the pro-tem speaker Karupaya invited the members. Chief Minister C. Joseph Vijay and the cabinet members, opposition leader Udayanidhi Stalin, former Chief Ministers Edappadi Palaniswamy and O. Panneerselvam took the oath today. Prominent members Premalata Vijayakant, Soumya Anbumani and leaders of the alliance also took oath. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a partner in strengthening the nation amid the West Asia crisis. The Prime Minister made the 7 appeals to the nation while addressing a function in Hyderabad yesterday. He urged citizens to help conserve foreign exchange reserves by reducing the consumption of imported fuel through the use of public transport and carpooling. The Prime Minister's appeal comes at a time when crude oil prices are trading above $100 per barrel due to the West Asia crisis, and the deadlock in the Strait of Hormuz still persists. Crude oil prices had touched a 52-week high of $126 per barrel at the end of last month.
1: आज जो संकट है, उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा
0: Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav has also urged citizens and businesses to reduce expenditure on items that require foreign exchange in view of the ongoing global uncertainties. He was addressing the CII Annual Business Summit in New Delhi today.
4: We as citizens, as our Prime Minister has asked all of us to, can reduce our expenditure on everything that requires foreign exchange to be spent. And in our lives, in our own ways of working, we can identify whatever we can do to preserve the foreign exchange. Simultaneously, we must also earn the foreign exchange more and more. Both things have to go in parallel. So I'll request all of you to take cognizance of Honorable Prime Minister's call to the nation.
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The centre has notified the implementation of the Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act 2025, BBG Ramji. The act will be rolled out nationwide from the 1st of July this year. The Rural Development Ministry said the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. More from our correspondent.
5: The Viksit Bharat Jiramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households. The act places strong emphasis on timely, transparent, and accountable wage payments. The new act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The Viksit Bharat Jiramji Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of Viksit Bharat by 2047. With Deependra Kumar, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
0: to encourage greater participation of women workers, the Vikasit Bharat Ji Ramji Act incorporates an important provision for childcare support at work sites. A woman worker will be appointed to take care of the children wherever five or more children below the age of five are present. Defence Minister Rajnath Singh today chaired a meeting of the informal empowered group of ministers constituted to monitor the situation in West Asia. The meeting was held to review the evolving situation in the region. Union ministers Jagat Prakash Nadda, Hardeep Singh Puri, Sarbanand Sonowal, Kiran Rijiju, Dr. Jitendra Singh and K. Ram Mohan Naidu attended the meeting. In Himachal Pradesh, six people were killed and four others, including two children, were seriously injured when their vehicle plunged into a gorge near Kakira in the Bhatiyat area of Chamba district. The injured have been admitted to Tanda Medical College. Among the deceased, five were tourists from Gujarat, while the driver was a resident of Mandi district in Himachal Pradesh. The accident occurred in the wee hours today. SP Chamba Vijay Saklani said it was raining heavily in the area at the time of the accident. He added that rescue and relief operations were launched immediately after the incident. Police are investigating the cause of the accident. The country's economy has stayed resilient despite global headwinds. According to an SBI research report released today, the economy is projected to grow by 6.6% in the fiscal year 2026-27. The report also estimates real GDP growth at nearly 7.2% in the fourth quarter of the last fiscal year. National Technology Day is being celebrated today. On this day in 1998, India successfully tested its nuclear bombs in Pokhran, Rajasthan. The day celebrates the country's scientific achievements, technological advancements, and growing innovation ecosystem. More from our correspondent.
6: This day serves as a reminder of the significant role that technological advancements play in the country's progress and development. It memorializes the contributions of scientists, engineers, and innovators to India's technological expertise and the launch of India's first indigenous aircraft, Hansa 3. It also memorializes the sixth global nuclear test, demonstrating India's global position. National Technology Day aims to highlight the role of technology in daily life, encouraging youth interest in science and technology. The day also raises awareness about technology's role in addressing societal challenges and improving daily life. As India embraces cutting-edge technologies like AI, biotechnology, and quantum computing, the day serves as a reminder of progress and the power of innovation. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
0: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators, and researchers of the country on the occasion. India Meteorological Department, IMD, has forecast isolated thunderstorms, lightning and gusty winds over northwest parts of the country till Thursday. Isolated hailstorm activity is also likely to be experienced in Jammu Kashmir, Ladakh, today and tomorrow. The weather agency has said that Himachal Pradesh and Uttarakhand are also expected to experience similar conditions tomorrow. Meanwhile, the Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas, tomorrow and the day after tomorrow. In IPL cricket, Punjab Kings will face Delhi Capitals at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala this evening. The match will begin at 7:30 p.m. In football, India will play against hosts China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. A win will seal India's qualification for the FIFA Under-17 Women's World Cup. Benchmark domestic equity indices continue to trade around 1% down in afternoon session today. The Sensex dropped 796 points to 76,533. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing. Also launches Ayushman Bharat Health Scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat Ji Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And with that, we end the midday news.
7: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
7: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
7: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा। बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
7: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीर सेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
8: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
1: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
7: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
9: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
7: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारम्भ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। फिल्म संगीत के इस सफर में स्वागत है आपका। करते हैं कार्यक्रम का आगाज और सुनवाते हैं फिल्म नया दौर का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। ओपी नैयर साहब का संगीत है और इस गीत को रचा है साहिर लुधियानवी ने।

आप सुन रही थी मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म लाल पत्थर का ये गीत। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। अब आइए सुनवाते हैं लता मंगेशकर को फिल्म द ट्रेन में। शब्दकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

और आइए अब सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन।

आपने सुना प्रियतमा फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में अनजान के रचे इस गीत को संगीत से संवारा था राजेश रोशन ने।

0: یہ گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں فلم گائیڈ سے. شیلیندر کا رچا یہ گانا تھا, سنگیت سچن دیو برمن کا تھا. اس گانے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا فلم سنگیت کا یہ سفر اب یہیں پورا ہوتا ہے. اب آپ سنیں گے آکاشوانی رانچی سے پرسارت پرادیشک سماچار.
1: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा. केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी मिशन को अधिसूचित कर दिया है जो 1 जुलाई से लागू होगा. इस नए अधिनियम के तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी. सरकार ने इसके लिए 95,692 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है जिससे ग्रामीण भारत सशक्त होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए सोमनाथ मंदिर को देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि यह पर्व अगले 1000 वर्षों तक देश को प्रेरणा देगा. इस दौरान प्रधानमंत्री ने 1998 के परमाणु परीक्षणों का जिक्र कर भारत की वैज्ञानिक क्षमता और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी सराहना की.
2: देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए. हमारे वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमता को दुनिया के सामने रखा. दुनिया में तूफान आ गया. दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी. अनेक प्रकार के बंधन लग गए. उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है. दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती.
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज दिल्ली में देश की पहली बैरियर रहित टोल प्रणाली का उद्घाटन किया. इस मल्टी लेन फ्री फ्लो तकनीक से अब टोल पर गाड़ियां रुकेंगी नहीं और वाहन 100 की रफ्तार से निकल सकेंगे. एआई कैमरों से लैस इस सिस्टम से सालाना 285 करोड़ रुपए का ईंधन बचेगा और प्रदूषण में कमी आएगी. श्री गडकरी ने कहा कि टोल वसूली में पहले की 15% की परिचालन लागत अब घटकर लगभग 3-4% हो जाएगी, जिससे सालाना लगभग 6-7 हजार करोड़ रुपए की बचत होगी. गिरिडीह में बिजली पानी संकट के खिलाफ भाजपा ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. विधायक नीरा यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पपरवाटांड से डीसी कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला. समाहरणालय गेट पर प्रदर्शनकारियों ने मटका फोड़कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और डीसी को स्मारक पत्र सौंपकर समाधान की मांग की. प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को जमानत दे दी है. करीब 7 महीने जेल में रहने के बाद मिली इस राहत का कांग्रेस ने स्वागत किया है. पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसे न्याय की जीत बताया है.
3: हम ये कह सकते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित. जिस तरह से पिछले 2 वर्षों से आदमी आलमगीर आलम साहब को परेशान किया जा रहा था कि न्यायालय में लगातार गुहार लगा रही थी कि हमें इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है और अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जमानत देनी पड़ी.
1: हजारीबाग की दनुआ घाटी में कल रात एक भीषण सड़क हादसे में आधा दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गए. इस दुर्घटना में करीब 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर है. पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया. हादसे के कारण सुबह तक यातायात बाधित रहा. बोकारो पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नया मोड़ बस स्टैंड से 47 किलो अवैध गांजा बरामद किया है. सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि एसपी को मिली गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई थी. तस्कर इसे बस के जरिए बिहार भेजने की फिराक में थे. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. मौसम. राज्य में 16 मई तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। पलामू प्रमंडल को छोड़कर रांची, धनबाद और जमशेदपुर समेत अधिकांश जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 13 और 14 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और झारखंड की बेटी दिवाशी ने थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। जामताड़ा की रहने वाली दिवाशी ने इस उपलब्धि पर पूरे जिले में खुशी है। परिजनों और खेल प्रेमियों ने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओं, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओं आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए और हाँ मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर

0: संतुष्ट ना हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
1: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
1: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
1: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
1: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
1: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
1: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes sir, we have seen.
4: I have seen sir.
5: I like bicycle sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink.
9: And mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Trin, trin, trin!
2: Do it again, please.
3: Trin, trin, trin!
2: I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Trin, trin, trin goes the bell.
2: Makes my friends move aside.
3: Makes my friends move aside.
2: The seat is blue in color.
3: The seat is blue in color.
2: The tires and pedals are black.
3: The tires and pedals are black.
2: Sometimes fast. Sometimes slow. But my bicycle is always on track.
3: But

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।

0: जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बन लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया। अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर

1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। साहब
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया, हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ

0: चलते चलते कुछ ऐसे लोग जो सिटीजनशिप को छोड़ कर दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप को लेते हैं, और उस पीरियड में उनके साथ भी ऐसा होता होगा कि समहाउ सम पीरियड, नॉट एक साल बट एक महीना, दस दिन, पंद्रह दिन वो सिटीजनशिप लेस रहते हो किसी कंट्री के सिटीजनशिप, वैसे लोगों के लिए अगर कुछ मैसेज अगर आप देना चाहें तो।
1: देखिए, चाहे आप किसी भी प्रोसेस में, अगर गवर्नमेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो ये आपको अवेयर रहना होगा कि दीज प्रोसेसेस आर वेरी वेरी लेंदी, है ना। तो आपको इस लेंदी प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए आपको अपने आप को धीरज से बांधना होगा। धीरज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। और इनफैक्ट जब हम ये कर रहे थे, जब हम नेशनलिटी का काम कर रहे थे, तब उस टाइम हमें कहा गया कि थैंकफुली कि आप बांग्लादेश से नहीं हैं, अदरवाइज इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ मोर टाइम, जो कि बहुत लोगों का, बांग्लादेशी जो लोग लेना चाह रहे थे इंडियन सिटीजनशिप, वो उनका बहुत दिनों से पेंडिंग था। तो वो कहते हैं ना कि आप जितना प्रॉब्लम में हैं वो कम है, तो आप अपने प्रॉब्लम को कम आंक के चलिए और इसको एकदम धीरज बांध के चलिए कि नहीं, जो होगा एकदम आराम से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, और पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलिए। यही कहना चाहूँगी मैं उन लोगों से कि एक बार आपने सोच लिया ये करना है तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आगे कदम बढ़ाते चलना है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सुगंधा जी, आपने हमें समय दिया और अपने जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलुओं को शेयर किया।
1: हाँ, मेरे जीवन का एक और पहलू है, मतलब इससे इन सब सारी चीज़ों से, अभी मैं थोड़ा सा पोइटिक हो रही थी तो मुझे ध्यान आया कि मुझे पोइट्री, आर्ट, लैंग्वेजेस सीखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ बीच बीच में, अब साइकिलिंग वगैरह करती रहती हूँ।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।

दोस्तों अब घड़ी की सुई हमें आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है, तो मुझे यानी राजीव को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। इसमें आज आपने सुना हमारे विशेष मेहमान सुगंधा वर्मा से राजीव तिवारी की बातचीत। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: खुद गर्ज फिल्म का गीत अभी आपने सुना, नितिन मुकेश और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। गीतकार थे इंदिवर, संगीत था राजेश रोशन का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म जाग उठा इंसान का गीत, जिसे लिखा था इंदिवर ने, धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म कोयला का ये गीत। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार राजेश रोशन।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म महाराज से आवाज मुरली ठाकुर की है गीत लिखा है कौसर मुनीर ने और उसे संगीतबद्ध किया है सोहेल सेन ने

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। समाचार मुख्यांश आप सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में हमारे रांची केंद्र से।

0: आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला शुरू हुई। मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष 30% कम बारिश के अनुमान को देखते हुए वैज्ञानिकों ने किसानों को कम सिंचाई वाली फसलें उगाने की सलाह दी है। राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने रांची के करमडोली में 5 करोड़ की लागत वाले धुमकुड़िया भवन समेत 4 भवनों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन भवनों के निर्माण से जनजातीय संस्कृति संरक्षित होगी। राज्य में कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने इसे पशुपालन घोटाले जैसा बड़ा गबन बताते हुए सरकार से श्वेत पत्र जारी करने और प्रभावशाली दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। रांची के कोकर से 18 माह की बच्ची के लापता होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस प्रशासन को बच्ची की सकुशल बरामदगी के लिए 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। साहू ने कहा कि अगर समय सीमा में बच्ची नहीं मिली तो भाजपा उग्र आंदोलन करेगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में गुमला जिला पूरे राज्य में अव्वल रहा है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आज नगर भवन में मेधावी छात्र छात्राओं और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों और शिक्षकों को कड़े परिश्रम को दिया है। सिमडेगा पुलिस ने गांजा तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए करीब 43 किलो गांजा जब्त किया है। एसपी श्रीकांत खोटरे ने बताया कि ओडिशा से बिहार ले जाई जा रही इस खेप के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार मुख्यांश हमारे रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं सिमरन कुमारी।
1: और मैं हूं साहिल कुमार शर्मा। और आप

0: चुनौतियों और नई सोच से जुड़ा खास कार्यक्रम युववाणी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे विषय जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि आज के युवाओं की असली तस्वीर है।
1: युववाणी में हम हमेशा बात करते हैं उन विषयों की जो कहीं ना कहीं युवाओं की जिंदगी और सोच से जुड़े होते हैं।
0: साथियों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक ऐसे खतरे के साथ जो धीरे धीरे हमारे देश की भविष्य को खोखला कर रहा है। यह खतरा है नशा।
1: भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है। हमारे देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। यही युवा भारत की ताकत है। यही आने वाले भारत के वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक, शिक्षक और नेता है। अगर युवा मजबूत होंगे तो भारत मजबूत होगा, लेकिन अगर युवा नशे की गिरफ्त में चले गए तो देश का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा।
0: आज पूरी दुनिया में ड्रग्स और नशे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में करोड़ों लोग किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत जैसे युवा देश में यह समस्या और तेजी से बढ़ रही है।
1: कोरोना काल के बाद युवाओं में तनाव, अकेलापन और मानसिक दबाव बढ़ा और उसी के साथ बढ़ी नशे की प्रवृत्ति। स्वतंत्र संस्था थिंक चेंज की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना के बाद देश में नशीले पदार्थों की खपत में तेज वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा खतरा 10 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों और किशोरों पर देखा गया है।
0: आज हालत इतने गंभीर हो चुके हैं कि स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और यहाँ तक कि छोटे कस्बों तक नशे की पहुँच हो चुकी है। पहले यह समस्या केवल बड़े शहरों या कुछ राज्यों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब गाँव तक में प्रबंधित नशीले पदार्थ आसानी से उपलब्ध हैं।
1: अब सवाल ये है कि आखिर युवा नशे की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है पीयर प्रेशर, यानी दोस्तों का दबाव। कई युवा सिर्फ कूल दिखने या ग्रुप में फिट होने के लिए नशा शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया और फिल्मों में भी कई बार नशे को ग्लैमर की तरह दिखाया जाता है। इसके अलावा बेरोजगारी, पढ़ाई का तनाव, पारिवारिक समस्याएं, अकेलापन, मानसिक तनाव और असफलता का डर भी युवाओं के नशे की ओर ढकेल रहा है।
0: आज के समय में नशे के कई रूप हैं। शराब, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा जैसे पारंपरिक नशों के अलावा अब गांजा, चरस, अफीम और ई सिगरेट जैसे खतरनाक पदार्थ युवाओं तक पहुंच चुके हैं।
1: कई युवा मेडिकल दवाइयों का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जैसे नशीली सिरप, पेन किलर और स्लीपिंग पिल्स।
0: सबसे खतरनाक बात यह है कि अब नशे की सप्लाई का तरीका भी बदल चुका है। पहले सीमाओं से तस्करी होती थी, लेकिन अब समुद्री रास्तों, ड्रोन, ऑनलाइन नेटवर्क और सोशल मीडिया के जरिए नशे का कारोबार फैल रहा है। भारत में नशे की तस्करी रोकने के लिए कई एजेंसियां काम कर रही है। NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पुलिस, CBI, ATS, कोस्ट गार्ड और नेवी लगातार बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं।
1: ऑपरेशन गरुण जैसे अभियानों में हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए और हजारों संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। भारत सरकार ने NDPS एक्ट जैसे कड़े कानून बनाए हैं और नशा मुक्त भारत अभियान भी शुरू किया गया है।
0: सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाया जाए।
1: लेकिन केवल कानून से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। समाज, परिवार और युवाओं को भी आगे आना होगा, क्योंकि नशा सिर्फ शरीर को नहीं पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है।
0: इससे दिमाग कमजोर होता है, याददाश्त कम होती है, मानसिक बीमारियां बढ़ती है, दिल और फेफड़े खराब होते हैं, कई मामलों में आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। पुरुषों में नशे का लत अधिक देखा जाता है, लेकिन अब महिलाओं और किशोरियों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।
1: महिलाओं पर इसका असर और भी गंभीर हो सकता है, क्योंकि इससे हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती है। अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले युवाओं को ये समझना होगा कि नशा स्टाइल नहीं, साइलेंट मौत है। अच्छे दोस्तों का साथ चुनना जरूरी है।
0: खेल, संगीत, पढ़ाई, योग, मेडिटेशन और क्रिएटिव एक्टिविटीज युवाओं को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं।
1: अगर कोई व्यक्ति पहले से नशे की गिरफ्त में है तो उसे शर्मिंदा करने के बजाय मदद करनी चाहिए। डी एडिक्शन सेंटर्स, काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन के जरिए लोग दोबारा सामान्य जिंदगी में लौट सकते हैं।
0: भारत सरकार ने इसके लिए कई हेल्पलाइन और योजनाएं शुरू की है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन किरण 1800-599-0019, राष्ट्रीय नशा मुक्त हेल्पलाइन 1446 और आपातकाल

0: सहायता के लिए एक एक दो पे भी आप संकल्प कर सकते हैं।
1: आइए आज एक संकल्प ले, खुद नशे से दूर रहेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे
0: और एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान देंगे, क्योंकि युवा बचेंगे तभी भारत आगे बढ़ेगा। खुद से प्यार करें, अपने जीवन से प्यार करें और इस गाने के साथ कहें अपनी जिंदगी को लव यू जिंदगी।

0: आपने सुना लव यू जिंदगी। ये गीत फिल्म डियर जिंदगी से लिया गया है। इस गीत को अपनी आवाज दी है अमित त्रिवेदी और जसलीन रॉयल ने। गीत के संगीतकार है अमित त्रिवेदी और इसके बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने।
1: साथियों, आज पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। कभी डेवलपिंग नेशन कहे जाने वाला भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है। वर्तमान समय में भारत लगभग $4 ट्रिलियन GDP की ओर बढ़ती हुई दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन सवाल है, इस बढ़ती अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा? जवाब है, भारत के युवाओं को।
0: आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे देश की लगभग 65% आबादी युवा है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही है। उन्हें यहां सिर्फ बाजार नहीं दिखता, उन्हें दिखता है टैलेंट, मेहनत और इनोवेशन। कुछ साल पहले तक युवा सिर्फ सरकारी नौकरी को ही करियर मानते थे, लेकिन आज अपॉर्चुनिटीज की दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है। IT सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, रीन्यूएबल एनर्जी, एनिमेशन, गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऐसे दर्जनों नए क्षेत्र युवाओं के लिए खुल चुके हैं। भारत में तेजी से बढ़ता डिजिटल इंडिया अभियान भी युवाओं के लिए नई राहें खोल रहा है। आज गाँव का युवा भी मोबाइल और इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन लर्निंग कर सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है, अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकता है। पहले नौकरी खोजनी पड़ती थी, लेकिन आज युवा खुद रोजगार देने वाला बन रहा है।
1: स्टार्टअप कल्चर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में से एक बन चुका है। हजारों नए स्टार्टअप्स हर साल शुरू हो रहे हैं। कई छोटे शहरों के युवा भी आज अपनी मेहनत और आइडियाज के दम पर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। सरकार भी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, PM मुद्रा योजना जैसी योजनाएं युवाओं को स्किल, लोन और ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। आज युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय स्किल इकोनॉमी का समय है।
0: लेकिन साथियों, हर अवसर के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अगर युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा देंगे, टेक्नोलॉजी सीखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे और नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहेंगे, तो भारत की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आज दुनिया में कई देश पॉपुलेशन क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, जहां काम करने वाले युवाओं की संख्या कम हो रही है, लेकिन भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी विशाल युवा शक्ति। अगर इस शक्ति को सही शिक्षा, स्किल और अवसर मिले, तो यही युवा भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं।
1: हमें यह समझना होगा कि आज का समय कॉम्पिटिशन का ही नहीं, क्रिएशन का भी है। जो युवा सीखना नहीं छोड़ेंगे, वही आगे बढ़ेगा। जो टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बदल लेगा, वही भविष्य बनाएगा। इसलिए युवाओं से यही कहना है, अपने सपनों को छोटा मत समझिए। हर छोटा स्किल, हर नई सीख, हर मेहनत आपके भविष्य को बदल सकती है।
0: और याद रखिए, भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों से नहीं बढ़ती, वह बढ़ती है युवाओं की मेहनत, क्रिएटिविटी और सपनों से। तो आइए, निराशा नहीं, नई सोच अपनाइए, समय के साथ खुद को बदलिए, स्किल सीखिए, आगे बढ़िए और भारत की तरक्की का हिस्सा बनिए।
1: क्योंकि युवा मजबूत होंगे, तभी भारत विकसित होगा। तो चलिए, भारत की GDP की तरह हम भी ले एक बागी उड़ान इस गाने के साथ।

0: आपने सुना इलाही। ये गीत फिल्म ये जवानी है दीवानी का बेहद लोकप्रिय गीत है। इस गीत को अपनी आवाज दी है अरिजीत सिंह ने। गीत के संगीतकार है प्रीतम और इसके बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।
1: दोस्तों, सपनों की उड़ान तभी पूरी होती है जब इंसान मेहनत, हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। और आज सफल लोगों की कहानियों में हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने सिर्फ अपने सपनों को पूरा नहीं किया बल्कि देश की लाखों बेटियों के लिए नई राह भी बनाई।
0: हम बात कर रहे हैं किरण बेदी की, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। बचपन से ही उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और कुछ अलग करने की जज्बा था। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ लॉन टेनिस में भी राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया।
1: एक ऐसा समय था जब पुलिस सेवा को सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन किरण बेदी ने इस सोच को बदल दिया। उन्होंने साल 1972 में मात्र 23 वर्ष की उम्र में आईपीएस ज्वाइन करके इतिहास रच दिया। उस दौर में महिलाओं के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचना आसान नहीं था। समाज की सोच, चुनौतियां और दबाव सब उनके सामने थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
0: दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के दौरान उनकी सख्ती और ईमानदारी इतनी मशहूर हुई कि लोग उन्हें क्रेन बेदी कहने लगे। नियम तोड़ने वालों पर उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, चाहे सामने कोई आम इंसान हो या कोई बड़ा नेता।
1: लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी तिहाड़ जेल में किया गया सुधार। जब उन्होंने तिहाड़ जेल की जिम्मेदारी संभाली तब वहाँ अपराध, हिंसा और अव्यवस्था का माहौल था। उन्होंने कैदियों के लिए शिक्षा, योग, मेडिटेशन और स्किल ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रम शुरू किए। उनका मानना था कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए।
0: अपने लंबे करियर में किरण बेदी ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वे दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी है और उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्राइजन रिफॉर्म्स और सोशल सर्विस जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए। वर्तमान समय में वे एक सामाजिक कार्यकर्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर के रूप में युवाओं को प्रेरित कर रही हैं।
1: किरण बेदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ पद या शक्ति से नहीं मिलती बल्कि ईमानदारी, अनुशासन और समाज के लिए काम करने की सोच से मिलती है। आज भारत की लाखों

0: लड़कियां उन्हें इंस्पिरेशन मानती है। उन्हें साबित किया गया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती।
1: तो दोस्तों, अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो डर से नहीं, हौसले से दोस्ती कीजिए, क्योंकि इतिहास वही लोग लिखते हैं जो मुश्किल रास्तों पर चलने की हिम्मत रखते हैं। और अब समय हो चला है खेल जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों का।
0: आज 11 मई है और आज से ठीक एक महीने बाद 11 जून से शुरू होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026। यह वर्ल्ड कप 19 जुलाई तक होगा। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी 3 देश करेंगे। इस वर्ल्ड कप के मैचेस 16 शहरों में खेले जाएंगे, 11 यूएसए, 3 मेक्सिको और 2 कनाडा। रविवार को हुए आईपीएल मुकाबले की बात करें तो शाम को मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के दिए गए 204 रनों के लक्ष्य को 19.2 ओवरों में चेज कर लिया। सीएसके ने यह मैच 5 विकेट से जीता। जेमी ओवर्टन ने 4 ओवरों में 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच अपने नाम किया। वहीं बात करें शाम के थ्रिलर मुकाबले की, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आखिरी गेंद पे 167 रनों का लक्ष्य चेज करके 2 विकेट से जीत अपने नाम की। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने राज्य की अपनी T20 लीग की घोषणा की है। 6 फ्रेंचाइज टीम्स की बिडिंग का आज आखिरी दिन है। लालीगा के एल क्लासिको मुकाबले में फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड FC को 2-0 से हराया। आईपीएल में आज मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का। अब सिमरन आपको बताएगी आज के मौसम का हाल।
1: तो आइए जानते हैं मौसम की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। वहीं कुछ राज्यों में गर्मी और हीट वेव जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों के योगदान को सराहा और 1998 के पोखरण परीक्षणों को देश की तकनीकी प्रगति का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह यूरोप दौरे के दौरान संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा भी करेंगे, जहां भारत और UAE के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में UPSC प्रारंभिक परीक्षा 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और अभ्यर्थियों को अंतिम दिनों में रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। तो श्रोताओं, आज के युवाणी में बस इतना ही।
0: इसी के साथ अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शाम को। तब तक के लिए मैं साहिल कुमार शर्मा
1: और मैं सिमरन कुमारी
0: इजाजत लेते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी जमशेदपुर।

0: युववाणी। ये था युवा श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 MHz पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है। आकाश।

कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाइयों को मालती का नमस्कार। श्रमिक श्रोताओं, आधे घंटे के इस कल कारखाने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको बताएं कि अपने कार्यक्रम में आज हम आपको एक वार्ता सुनवाएंगे। विषय होगा कोल्हान के पर्यटन स्थल। इसके साथ ही आपके मनोरंजन हेतु कुछ फिल्मी गीत भी आप इस कार्यक्रम में सुन पाएंगे। लेकिन आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें अपनी चर्चा से। श्रोताओं, इन दिनों गर्मी का मौसम है। तेज धूप और तापमान बढ़ने से मौसम के मिजाज भी गर्म हो जाते हैं। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी भी कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, जैसे शरीर में पानी की कमी होना, लू लगना या गर्मी से थकावट का होना, त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे सनबर्न का होना। ये सब आम बातें होती हैं। गर्मी के मौसम में भोजन जल्दी खराब हो जाता है और यदि वो खा लिया जाए तो विषाक्त भोजन से पेट संबंधी परेशानियां जैसे बदहजमी, फूड पॉइजन आदि होते हैं। गर्मी की वजह से थकान और कमजोरी लगने की समस्या भी हो सकती है। इन सब परेशानियों के मद्देनज़र स्वास्थ्य की उचित देखभाल की ज़रूरत है। इस मौसम में आप रोज़ाना कम से कम 8-10 ग्लास पानी अवश्य रूप से पिएं। अपने रोजाना आहार में नारियल का पानी, नींबू पानी और ताजे जूस शामिल करें। गर्म पेय जैसे चाय, कॉफी का अधिक सेवन न करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर में जल की कमी नहीं होती है। गर्मी के मौसम में पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। आप तरबूज, आम, खीरा, दही और सलाद का सेवन कर सकते हैं। सड़क पर मिलने वाले ठेले के भोजन, तैलीय और मसालेदार भोजन एवं बासी भोजन करने से बचें। पौष्टिक आहार लेने से शरीर ऊर्जावान बना रहता है। श्रोताओं, जिस तरह आहार की जरूरत है उसी तरह गर्मी से खुद को बचाने की भी जरूरत है। इस मौसम में लू लगने की भी समस्या होती है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर जाने से बचना होगा। ढीले सूती वस्त्र पहने, धूप के चश्मे, टोपी और छाते का इस्तेमाल करें और सन स्क्रीन लगाकर ही धूप में जाएं, जिससे आपकी त्वचा सुरक्षित रहेगी। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद लें, ठंडी जगहों पर रहें। अगर तेज बुखार, उल्टी, अत्यधिक कमजोरी और बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दें तो चिकित्सक के पास तुरंत जाएं। श्रोताओं, इस तरह छोटे छोटे कदम आपको गर्मी के मौसम में स्वस्थ रहने और सुरक्षित रूप से आनंद लेने में आपकी मदद कर सकते हैं और आप गर्मी की छुट्टियों का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। इस चर्चा के बाद आइए अब आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: फिल्म आनंद का ये गीत था, आवाज मुकेश की थी, शब्द रचना योगेश की और संगीत था सलिल चौधरी का। श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवा रहे हैं ये वार्ता कोल्हान के पर्यटन स्थल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए वाचन स्वर है राजेश कुमार राय का और आलेख है धनंजय कुमार का।
1: हमारे प्यारे राज्य झारखंड का कोल्हान सिंहभूम प्रमंडल जहां अपने खनिज संपदाओं हेतु मशहूर है, वहीं इस क्षेत्र में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थलों की भी भरमार है। प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सौंदर्य की तो बात ही निराली है। वनों से भरपूर रमणीक खूबसूरती, ऊंची नीची मनोहारी पहाड़ियां, झरझर गिरते झरने तथा कलकल करती नदियां यहां पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। इस प्रमंडल के तीनों जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां में रूरल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म तथा इको टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं। इन तीनों जिलों की पर्यटन विशेषता इस प्रकार हो सकती है। पूर्वी सिंहभूम में नियोजित औद्योगिक नगरी, पश्चिमी सिंहभूम में सघन वन एवं खनिज संसाधन तथा सरायकेला खरसावां का अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर। इस तरह कोल्हान में कई ऐसे स्थल हैं जो तो अभी विकसित हैं, जबकि कई जगहों को विकसित किया जा सकता है। सबसे पहले धार्मिक पर्यटन की चर्चा करें तो सिंहभूम को शिव भूमि कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में कई शिव मंदिर एवं प्राचीन शिवलिंग विराजमान हैं कि यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर कहा जा सकता है। जमशेदपुर से सटे दलमा पहाड़ की चोटी पर बाबा दलमेश्वर का प्राचीन मंदिर मौजूद है, जो गुफा के अंदर अवस्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर चांडिल से आगे बढ़ने पर स्वर्णरेखा नदी के किनारे जैदा गांव में जैदा बाबा का मंदिर है। यहां पर स्थापित मुख्य शिवलिंग के अतिरिक्त खुदाई से मिले कुछ और भी शिवलिंग हैं। घाट शिला अनुमंडल के बहरागोड़ा के पास प्राचीन चित्रेश्वर धाम की भी महत्ता है। सिंहभूम एवं उड़ीसा के सीमा पर नोआमुंडी के निकट मुर्गेश्वर महादेव मंदिर है। एक छोटे परंतु खूबसूरत झरने के पास अवस्थित इस शिव मंदिर में लोग वर्ष भर दर्शन हेतु आते रहते हैं। मनोहरपुर के समीप सारंडा के जंगलों में रेल सुरंग के ही पास महादेवशाल है। यह मंदिर भी शिव भक्ति एवं श्रद्धा का केंद्र है, जहां सावन माह में भारी भीड़ जमा होती है। मनोहरपुर के ही पास समीज ग्राम में शंकराचार्य संचालित विश्व कल्याण आश्रम में राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर एवं संगमेश्वर शिव मंदिर है। यह काली कोकिला नदियों के संगम तीर्थ पर अवस्थित है। जादूगोड़ा के प्राचीन रंकिनी माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा लगी रहती है। गालूडी एवं घाटशिला में भी रंकिनी मंदिर है। अब धार्मिक के पश्चात सांस्कृतिक पक्ष की बात करें तो सरायकेला खरसावां का छऊ नृत्य तो विश्व प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्ध शैली के अतिरिक्त यहाँ के जनजातीय पर्व त्योहार तथा उससे संबंधित लोक नृत्य भी अत्यंत मनोहारी हैं, जैसे कि सरहुल नृत्य, जतरा, करम, जमदा, जदुर, दसई, पाइका, झूमर वगैरह। इन अनूठे सांस्कृतिक रंगों को पर्यटन से जोड़कर क्षेत्र को प्रसिद्ध बनाया जा सकता है। वैसे चैत्र माह में सरायकेला छऊ महोत्सव का आयोजन किया जाता है, परंतु इसे और नियोजित प्रोत्साहन की जरूरत है। अब अगर नियोजित नगर प्रणाली की चर्चा करें तो जमशेदपुर नगर का एक विशिष्ट स्थान है। पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय जमशेदपुर लौह नगरी एवं स्टील सिटी जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। देश के अग्रणी औद्योगिक शहरों में से एक होने के बावजूद यह साफ सुथरा, स्वच्छ एवं हरियाली से परिपूर्ण है। टाटा स्टील के संस्थापक जमशेद जी नसीरवान जी टाटा के सपनों का शहर टाटा नगर भी कहा जाता है। झारखंड राज्य के दक्षिणी हिस्से में अवस्थित तथा छोटानागपुर पठार का हिस्सा जमशेदपुर रमणीक दलमा पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है। स्वर्णरेखा एवं खरकाई नामक दो नदियों के संगम स्थल पर बसे होने के चलते इसकी छटा निराली है। जो लोग जमशेदपुर पर्यटन हेतु आते हैं उन्हें यहाँ का नगर प्रबंधन, सड़क, सामुदायिक जीवन, वृक्षारोपण, विद्यालय एवं कल कारखाने अवश्य आकृष्ट करते हैं। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कमिंस, टाटा पिगमेंट्स, टेलकॉन, जुस्को, टिनप्लेट कंपनी, टिमकेन इंडिया इत्यादि शामिल हैं। यहाँ का तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र तो पूरे एशिया में अपने लघु उद्योगों हेतु जाना जाता है। जमशेदपुर शहर के हृदय स्थली में मौजूद है सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थल जुबली पार्क। टाटा स्टील के स्वर्ण जयंती वर्ष में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पार्क का उद्घाटन किया था। मैसूर के मशहूर वृंदावन गार्डन्स की तर्ज पर बने इस पार्क में सायंकाल में घूमने का एक अलग ही आनंद है। सभी सैलानियों एवं पर्यटन प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र तो निश्चित रूपेण जुबली पार्क ही है, परंतु इस प्रसिद्ध पार्क के अतिरिक्त और भी कई छोटे बड़े पार्क तथा मनोरंजन एवं आमोद प्रमोद के स्थल यहाँ मौजूद हैं। कोल्हान में अपार जैव विविधता है तथा छोटानागपुर पठार का यह हिस्सा अकूत वन संसाधनों से समृद्ध है। जमशेदपुर के पार्श्व में दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यह दलमा वन्य जीव अभयारण्य अपने हाथियों हेतु प्रसिद्ध है। गजराजों की बहुलता के चलते इसे हाथियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। 192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह आरक्षित अभयारण्य हाथियों के अलावे हरिन, बंदर, जंगली शुकर, जंगली कुत्ते, कोटरा, भालू, हाइना जैसे जानवरों की भी शरण स्थली है। शुष्क मिश्रित पर्णपाती वनों में साल की प्रमुखता है, जबकि जामुन, बहेड़ा, केंदू, करम की भी प्रचुरता है। पर्यटकों हेतु दलमा पहाड़ के ऊपर पिंडरा बेड़ा में वन विभाग का गेस्ट हाउस तथा पहाड़ के आरंभ स्थल पर नीचे ही मकुला कोचा में वन विभाग के कॉटेज की भी सुविधा उपलब्ध है। वैसे दलमा पहाड़ ट्रैकिंग हेतु भी बहुत सटीक माना जाता है। ट्रैकिंग प्रेमी टूरिस्ट इस 3036 फीट ऊंचे पहाड़ पर दो रास्तों से जा सकते हैं। इसी दलमा पहाड़ की तराई में बसे डिमना लेक की खूबसूरती भी नायाब है। इस झील के चारों ओर मनोरम प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। इस झील में बोटिंग एवं अन्य वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा भी है। जाड़े के दिनों में यह पिकनिक मनाने वालों से भरा हुआ रहता है। इसी दलमा के विस्तारित रेंज के हरे भरे पहाड़ तथा स्वर्णरेखा नदी की प्रवाह यात्रा वाले पठारी क्षेत्र घाटशिला अनुमंडल में ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक तथा नैसर्गिक विशिष्टता वाले पर्यटन स्थल हैं। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कर्मस्थली होने के चलते इस शांत स्थल को झारखंड का शांति निकेतन भी कहा जा सकता है। घाटशिला कॉपर टाउन यानी ताम्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ का बुरुडी डैम, धारागिरी झरना, राजबाड़ी राज एस्टेट, फूलडुंगरी पहाड़, पांच पांडव चट्टान, गालुडी बैराज वगैरह पर्यटन हेतु प्रसिद्ध हैं। घाटशिला अगर ताम्र नगरी है तो नजदीक का जादूगोड़ा यूरेनियम नगरी की संज्ञा पा सकता है। 1967 से ही यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यूसिल यानी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय अवस्थित है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा एक पुराना शहर है। सघन वन क्षेत्र से आच्छादित तथा अन्य कई खूबियों को समेटने वाले इस पश्चिमी सिंहभूम में भी पर्यटन की भरपूर संभावनाएं हैं। जनजाति बहुल इस जिले में सतरंगी संस्कृति की समृद्धता है। वनों की बहुलता के चलते यह इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ के मझगांव प्रखंड यानी उड़ीसा सीमा पर स्थित बेनी सागर पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्ता से परिपूर्ण है, अतः यह हेरिटेज टूरिज्म का भी हिस्सा हो सकता है। यहाँ मौजूद प्राचीन प्रतिमाएं, बड़े बड़े वृक्ष और इन वृक्षों में वास करने वाले रंग बिरंगे पक्षी, सौम्य शांत एवं निर्मल जल वाला झील अनुपम प्राकृतिक दृश्य उपस्थित करता है। वास्तव में बेनी सागर प्राचीन शिल्प कला की एक अनूठी तथा ऐतिहासिक मिसाल है, जिसका उचित संरक्षण एवं संवर्धन किया जाना चाहिए। इस कड़ी के अलावे इस क्षेत्र की समृद्ध कला संस्कृति एवं मन को मुदित करने वाले लोकगीत एवं नृत्य भी ग्रामीण एवं सांस्कृतिक पर्यटन के महत्वपूर्ण पहलू साबित हो सकते हैं। और इसी पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भागों यानी उड़ीसा की सीमा की तरफ बढ़ने पर वनों की विपुलता तथा लौह अयस्कों की प्रचुरता भी बढ़ते जाती है। यही सीमाई भौगोलिक क्षेत्र घने वनों वाला सारंडा है। सारंडा के साल जंगलों की गिनती एशिया के सबसे घने वनों में होती है। मोटे मोटे तथा ऊंचे ऊंचे साल वृक्षों से आच्छादित इन सघन वनों के कुछ भागों जैसे थोलकोबाद वगैरह में तो सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल संचालित किरीबुरु टाउनशिप का सनसेट पॉइंट सारंडा की नैसर्गिक खूबसूरती निहारने का सटीक स्थल है। यहाँ से सारंडा के सघन हरित पहाड़ी वनों तथा इनके बीच पहाड़ी नदी नालों पर हो रहे सूर्यास्त का मनोरम एवं विहंगम दृश्य देखना अविस्मरणीय अनुभव है। इस तरह कोल्हान सिंहभूम अपने लौह अयस्कों हेतु प्रसिद्ध तो है ही, बल्कि अपनी अनुपम पर्यटन विशिष्टताओं का भी लोहा मनवा सकने में समर्थ हो सकता है, बशर्ते उचित संरक्षण संवर्धन एवं समन्वय का साथ हो।
0: ये थे कोल्हान के पर्यटन स्थल।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरे हमसफर का ये गीत। लता मंगेशकर एवं मुकेश की आवाज़ें हैं, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

कल कारखाने, ये था श्रमिक श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर। इस समय शाम के 6 बजे हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित होंगे। प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य 1 वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said Somnath Temple in Gujarat stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. Mr. Modi today performed Mahapuja followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the Somnath Amrit Mahotsav. The celebrations mark 75 years since the inauguration of the restored temple dedicated to Lord Shiv. In a social media post, Prime Minister Modi said, 1,000 years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi said, the doors of the newly rebuilt Somnath Temple opened in 1951 in the presence of the then President Dr. Rajendra Prasad, proclaiming to the world that while the attackers have faded into the dust of history, the soul of Bharat endures. Earlier, addressing the gathering at the temple, Prime Minister Modi said, India is moving ahead with self-confidence and that the country's cultural heritage has played a key role in this progress. He said the reconstruction of the temple by Sardar Vallabhbhai Patel reflected India's commitment to preserving its heritage with pride.
1: Azadi ke samay, Sardar Sahab ne 500 se jyada riyasaton ko jodkar ek Bharat ka aadhunik swarup ghada tha. तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है.
3: The government today informed that there is no shortage of any petroleum products in the country and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas and 45 days of LPG. This was informed during the fifth meeting of the informal group of ministers on West Asia, chaired by Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi today. The meeting took stock of the latest developments in the conflict and discussed ways to bolster country's readiness to ensure its minimum effect on the people. India is among the few countries where petroleum prices have held steady throughout this period of global volatility, even after more than 70 days since the conflict started. During the meeting, it was informed that the foreign exchange reserves stand at a comfortable $703 billion. Defence Minister Rajnath Singh directed the officials to take concrete steps to implement the Prime Minister's appeal at the ground level. The Prime Minister had exhorted the people to reduce petrol and diesel consumption by using metros and public transport and opting to carpooling. He had also urged the citizens to help conserve foreign exchange reserves by refraining from unnecessary foreign travel, choosing domestic tourism and celebrations within India, and avoiding non-essential gold purchases for a year. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today said that the state government has decided to transfer land to the Border Security Force within 45 days for erecting a fence along the Bangladesh border. Mr. Adhikari announced the implementation of the centre's flagship Ayushman Bharat Health Scheme and several other initiatives of the central government in the state. Besides, the tenures of the nominated members, directors and chairpersons of the non-statutory boards, organizations, bodies and public sector undertakings of the state government of the West Bengal have been terminated today with immediate effect. The decisions were taken in the first cabinet meeting held today after the formation of the new government in the state following the recent assembly polls. Benchmark domestic equity indices fell around 1.5% today as a fresh flare-up in US and Iran tensions led to a rise in crude oil prices and dampened investor sentiment. The BSE Sensex plunged 1,313 points to close at 76,015. The NSE Nifty lost 360 points to settle at 23,816. In cricket, India continued to hold the number one position in the latest ICC Men's ODI team rankings following the annual update released today. India's rating slipped by 1 point from 119 to 118. New Zealand is on the second position, gaining 2 points to move up to 113. Australia stayed third with an unchanged rating of 109. The biggest movement inside the top five came from South Africa, which climbed above Pakistan to move into the fourth place. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
5: झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम में आज मैं कृष्णा कावेरी आप सबके साथ हूँ। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा जोहार। आज के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए संताली लोकगीत। कलाकार हैं उमा पदो मुर्मू।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे संताली लोकगीत। कलाकार थे उमापदो मुर्मू। श्रोताओं, इसके साथ ही लोकगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी कृष्णा कावेरी को दीजिए अनुमति। जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। संस्कृत समाचार आप सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् सोमनाथ अमृत पर्व न केवलं भूतकालस्य उत्सवः अस्ति अपितु आगामी सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणा सोत्रो भविष्यति। मन्दिरस्य पुनरुद्धारस्य 75 वर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भू हस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। केन्द्र प्रशासनेन 25-2000 वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः VBG रामजी इति अधिसूचितः। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। सहैव अनुमीयते यत् आगामि वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य सोमनाथ मंदिरे सोमनाथ अमृत पर्व महोत्सवावसरे विशेष पूजाम् अकरोत्। मंदिरस्य पुनरुद्धारस्य 75 वर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। महापूजायाः अनन्तरं कुम्भाभिषेकः ध्वजारोहण समारोहश्चापि सम्पन्नः। अवसरे अस्मिन् भाषमाणः प्रधानमंत्री प्रावोचत् यत् सोमनाथ मंदिरं देशस्य शाश्वत आत्मनः दिव्यतायाः सहैव अगाध श्रद्धायाः प्रतीकं वर्तते। तेन प्रोदीरितं यत् सोमनाथ अमृत पर्व केवलं भूतकालस्य उत्सवः नास्ति अपितु आगामी सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणास्तोत्रः भविष्यति।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवसावसरे प्रधानमंत्री प्रोक्तवान यत् अद्यतन दिवसे एवं भारतस्य देशस्य आद्यत्वेन परमाणु त्रयाणां परीक्षणं जातम्। अनेन अस्माकं वैज्ञानिकाः विश्वस्य पुरतः भारतस्य सामर्थ्यं प्रदर्शितवन्तः।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: पूर्वाहणे प्रधानमंत्री प्रभास पाटनम संप्राप्य हमीरजी गोहिल क्षेत्रम यावत 1 किलोमीटर दीर्घम पथ प्रदर्शनम अकरोत्। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी च तेन सह उपस्थितौ आस्ताम्। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य प्रतिमायां पुष्पार्पणं विधाय श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भू हस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। नूतन प्रशासनस्य निर्माणानन्तरं प्रथमायां मंत्रिमंडल गोष्ठ्यां एते निर्णयाः स्वीकृताः। मुख्यमंत्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामी 45 दिनेषु सीमा प्राचीर रचनार्थं भूम्यधिकारः सीमा सुरक्षा बलाय प्रदास्यते।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्रिणा श्री अधिकारी इत्यमुना राज्ये केन्द्र सर्वकारस्य महती आयुष्मान भारतम स्वास्थ्य योजना अन्याः च राष्ट्रीय योजनाः प्रवर्तयितुं घोषणा कृता। अनेन सहैव मंत्रिमण्डलेन विद्यालय शिक्षक पदानां आवेदकानां कृते आयुः सीमायां पञ्चवर्षाणां वृद्धिः अपि स्वीकृता, येन युवभिः अधिकारावसराः प्राप्स्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारस्य निरंतर प्रयासैः भारतं पश्चिम एशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। तेलंगाना राज्यस्य राजधान्यां हैदराबाद नगरे एकां जनसभां संबोधयन् श्रीमोदी नागरिकेभ्यः आह्वानम् अकरोत् यत् आगामी एक वर्षं यावत् तैलंधनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेश यात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्ण क्रयणे नियंत्रणं तथा च स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः विहितः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
0: केन्द्र प्रशासनेन पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः वीबीजी रामजी इति अधिसूचितः। अधिनियमोऽयम् अस्य वर्षस्य जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् कृत्स्नेहि देशे प्रवर्तयिष्यते। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। अद्य प्रकाशितेन SBI शोध इत्यस्य प्रतिवेदनेन अनुमीयते यत् आगामी वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। प्रतिवेदने इदमपि प्रोक्तं यत् GDP वृद्धिः प्रायः 7.2% भविष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता दलं विरुद्ध संयुक्त विपक्षी मोर्चा इति निर्मातुं ममता बैनर्जी महोदयायाः प्रस्तावः कांग्रेस वामपंथी दलैः निराकृतः। तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बैनर्जी कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दलं समेत्य सर्वेषां विपक्षी दलानां भाजपा विरुद्धं एकत्रीकरणाय आह्वानं कृतवती। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन बृहस्पतिवासरं यावत् देशस्य उत्तर पश्चिम भागस्य केषुचित् स्थानेषु मेघगर्जनस्य विद्युत्पातस्य प्रचण्ड वायुनां च पूर्वानुमानं ख्यापितम्। अद्य श्वः च जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्रयोः केषुचित् स्थानेषु उपल वर्षा अपि सम्भाव्यते। ऋतु विभागेन उक्तं यत् हिमाचल प्रदेशे उत्तराखण्ड राज्ये च श्वः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। अत्रावधेयं यत् उत्तराखण्ड प्रशासनेन चारधाम यात्रा यात्रिणः पर्यटकाः च निवेदिताः यत् ते राज्यस्य पर्वतीय क्षेत्रेषु प्रतिकूल स्थितिं वीक्ष्य सुरक्षिताः भवेयुः। IPL क्रिकेट क्रीडा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स इत्यनयोः दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा क्रीडा सायं 7:30 वादने आरप्स्यते। इति वार्ताः।

श्रोताओं, चलिए सबसे पहले आज के मुख्य आकर्षण से आपको अवगत करवा दें। आज भेंटवार्ता में आपको सुनवाएंगे फूलों की खेती कर आमदनी बढ़ाएं। इस विषय पर जानकारी देंगी सुश्री आरती वीना इक्का। साथ ही चर्चा करेंगे एमएसपी की जानकारी के विषय में। किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही केंद्रीय योजनाओं की जानकारी पर भी चर्चा करेंगे। मौसम का हाल भी साझा करेंगे। किसान भाई बहनों, समय रहा तो गीत संगीत से आप सबका मनोरंजन भी अवश्य करेंगे।

बहरहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और करते हैं आप सबसे कुछ बातचीत। श्रोताओं, भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन 11 मई 1998 ईस्वी में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षणों की ऐतिहासिक उपलब्धि और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में तकनीकी विकास का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। श्रोताओं, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी नवाचारों को सम्मानित करना है। किसान भाइयों, यह दिवस हमें विज्ञान, इनोवेशन एवं तकनीकी विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करता है।

0: किसान भाई बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये भेंट वार्ता। विषय है फूलों की खेती कर आमदनी बढ़ाएं। भेंट वार्ताकार हैं सुश्री आरती वीना इक्का और इनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव मेहता।
1: किसान भाइयों, आज हमारे बीच हैं सुश्री आरती वीणा एक्का जी, जो कृषि विज्ञान केंद्र दारीशाही पूर्वी सिंहभूम के कार्यक्रम समन्वयक हैं। आज हम इनसे फूलों की खेती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, फूलों की खेती आज एक व्यावसायिक रूप ले चुका है। इसे करके आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। तो इसी विषय पर आज हम बिना एक्का जी से बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैडम, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार किसान भाइयों
1: जी। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि फूलों की खेती की जो संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, खास करके कोल्हान के तीनों जिले में, वो क्या दिखता है आपको मैडम?
2: जी किसान भाइयों, हमारा जो कोल्हान क्षेत्र है, ये क्षेत्र फूलों की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ की जलवायु या आबोहवा हम कह सकते हैं, वो अन्य फसलों की खेती के साथ साथ फूलों की खेती में भी बहुत ही लाभदायक हो सकती है। जैसे इसके लिए जो मिट्टी चाहिए, बालुआई दोमट मिट्टी, वो यहाँ की मिट्टी है। और यहाँ का जो पीएच मान, जो मिट्टी का जो स्केल जो हम लोग नापते हैं, तो उसमें पीएच मान जो नापा जाता है वो करीब होना चाहिए, जो 5.6 से लेकर के 7.5 तक, वो करीब करीब यहाँ पे है। तो और सबसे उपयुक्त जो है फूलों की खेती के लिए पीएच मान, वो 7 से लेके 7.5 है। तो हम उसमें थोड़ा सा चूने का प्रयोग करके भी मिट्टी की अम्लीयता को थोड़ा सा

0: लोग बढ़ा सकते हैं, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। अम्लीय जो मिट्टी है उसको हम लोग अम्लीय से करके उदासीनता में ला सकते हैं, और यहाँ पर जो भी मिट्टी है उसमें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फूलों की खेती कर सकते हैं।
1: जी मैडम, जैसा कि जानते हैं हमारा ये क्षेत्र पठारी क्षेत्र है और यहाँ पानी की भी समस्या होती है, तो फूलों की खेती के लिए सिंचाई की कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यकता है?
0: किसान भाइयों, जैसे आप सब्जी की खेती करते हैं बिल्कुल उसी तरह ही फूलों की खेती के लिए भी पानी की जरूरत होती है। और जैसे अगर आप देखेंगे कि बरसात का मौसम हो तो बारिश के समय में तो बीच बीच में पानी आते ही रहते हैं, तो उसमें आवश्यकता अनुसार जब जरूरत हो तब हम फूलों को सिंचाई करेंगे अगर हम व्यावसायिक रूप से खेती कर रहे हैं। और अगर आपका गर्मी का मौसम है तो उसमें कम से कम 4 से 5 दिनों के अंतराल पर हमें सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। और उसी तरह अगर हम जाड़े में देखें तो जाड़े की ऋतु में थोड़ा ज्यादा अंतराल पे हम लोगों को पानी देने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मान लीजिए 10 से 12 दिन के अंतराल में पानी की आवश्यकता जरूरत के हिसाब से फिर हम लोगों को वहां पानी देना है।
1: जी बीना जी, हमारे यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक तो वो हैं जो अपने घरों में ही फूलों की बहुत ही अच्छी बागवानी करते हैं और तरह तरह के फूल उपजाते हैं
0: जी।
1: लेकिन जो हमारे किसान हैं उनको तो व्यावसायिक तौर पे इसकी खेती करनी है, तो इसके लिए वो कौन कौन से फूलों को चूज करें जिससे कि उनको इनका रिटर्न मिल सके?
0: जी किसान भाइयों, जैसे कि आप भी अपने घर में बहुत सारे फूल लगाते हैं, मौसम के अनुसार अलग अलग तरह के फूल लगाते हैं जिनको देख करके ना केवल हम खुश होते हैं बल्कि हम में जो स्वास्थ्य लाभ भी होता है। बहुत सारे लोग फूलों को देख करके ही उनकी बहुत सारी बीमारियां हैं जो दूर हो जाती हैं। तो हम जो है कि मौसम के अनुसार भी अलग अलग तरह के फूल लगाते हैं। जैसे हम लोग जाड़े की ऋतु में अगर देखें तो उसमें बहुत सारे फूल हैं, डहलिया है, स्वीट अलायसम है, कैलेंडुला है, स्वीट विलियम है, इस तरह से अनेकों फूल हैं जिसको हम लोग घर में गमले में या फिर बॉक्स में मिट्टी भर करके डाल सकते हैं या जमीन में भी उनको डाल सकते हैं। उसी तरह से अगर गर्मी के दिन हो तो उसमें जीनिया हुआ, बालसम हुआ, कोचिया हुआ, बटन फ्लावर हुआ, इसको हम लोग लगा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि गर्मी का मौसम है तो हमारे घर में फूल ना खिले, उसमें भी फूल खिलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। उसी तरह बारिश का मौसम हो तो बारिश के मौसम में भी बालसम हुआ, गेंदे का फूल हुआ, और फिर आपका ये बटन फ्लावर हुआ, इन सब फूलों की खेती जो है हम लोग करते हैं और उससे हमारा घर ही नहीं आसपास के का माहौल जो है वो भी बहुत खूबसूरत और अच्छा लगता है। तो ये तो हुआ, हम लोगों को मौसम के अनुसार अलग अलग फूल लगाते हैं जिससे हमारा मन प्रसन्न रहता है और हम लोग जो रोज दिन के पूजा में पाठ में हम लोग उस फूल को भी हम लोग चढ़ाते हैं और उसका यूज करते हैं। लेकिन अगर हम व्यावसायिक खेती की बात करें तो व्यावसायिक खेती के लिए हमारा जो ये क्षेत्र है उसमें निश्चित तौर पे हम गेंदा की खेती कर सकते हैं, गेंदा फूल की खेती। उसी तरह हम बेली की, फिर रजनीगंधा, ग्लैडोलस और फिर गुलाब की खेती यहाँ हम आसानी से कर सकते हैं। और इस समय अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे आसान और बहुत ही मतलब सरल ढंग से हम लोग गेंदे की फूल की यहाँ पे खेती कर सकते हैं।
1: जी जी, और आरती जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं जमशेदपुर एक ऐसा बाजार है जहाँ सालों भर फूलों की मांग रहती है, यहाँ हर क्षेत्र के लोग रहते हैं, उन्हें फूलों की जरूरत पड़ती है, पूजा हो, त्यौहार हो, किसी भी तरह के ओकेजन में पड़ता है। तो आपने गेंदा और गुलाब या बेली की अभी आपने चर्चा की है, व्यावसायिक तौर पे खेती की, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि गेंदा की खेती के लिए किसान भाई की अपने खेतों की तैयारी कैसे करेंगे?
0: किसान भाइयों, अगर आप गेंदा फूल की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आपका जो जमीन है वो खुले स्थान पर हो और वो ऐसे नहीं हो कि पेड़ पौधों से घिरे हो, वहाँ पे छाया पड़ता हो, वो खुले आसमान के नीचे हो ताकि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश और जो भी हवा है वो खुले रूप से पौधे को मिलता रहे। तो इस तरह की भूमि का हम चुनाव करेंगे, वहाँ पानी का ज्यादा जमाव ना हो और मिट्टी जो है बालुई दोमट मिट्टी हो, वो जमीन हम गेंदा की फूल की खेती के लिए ले सकते हैं। और अगर वहाँ का पीएच मान 7 से नीचे है तो हम उस मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए उसमें 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें बुझा हुआ जो चूना है उसको हम लोग डाल करके वहाँ की मिट्टी की अम्लता को कम कर सकते हैं। और जब हम गेंदा फूल की बात करेंगे तो गेंदा फूल में हम देखते हैं कि इसमें दो तरह की प्रजातियां हैं, एक है अफ्रीकन गेंदा और दूसरा है फ्रेंच गेंदा। तो जो अफ्रीकन गेंदा है उसमें आपका इंका आता है, देन उसमें आपका आपका पूसा ऑरेंज है, आपका जो किस्म है दूसरी किस्म है वो है अफ्रीकन नारंगी, अफ्रीकन येलो, इस तरह से उसकी बहुत सारी किस्में हैं, तो आप उनका

0: चुनाव अपने ढंग से कर सकते हैं कि आप अफ्रीकन गेंदा लगाना चाहते हैं या फ्रेंच गेंदा लगाना चाहते हैं।
1: जी,
0: तो अफ्रीकन गेंदा है जो उसकी लंबाई काफी होती है, वो 90 से 100 सेंटीमीटर लंबी होती है और उसकी पत्ती थोड़ी चौड़ी होती है और उसमें डालियां भी काफी बनती है। उसी तरह से अगर हम फ्रेंच गेंदा की बात करें तो उसकी जो किस्में हैं उसमें रस्टी रेड है, उसमें येलो ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप, मेलोडी, इस तरह की किस्में हैं। तो आपको बाजार में बहुत सारी किस्में मिल जाएंगी। हो सकता है मैं जिनका नाम नहीं ले रही हूँ वो भी आपको वहां पे मिले, और आप प्रजाति के अनुसार जो गेंदा लगाना चाहते हैं उसकी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। जो फ्रेंच गेंदा है उसकी ऊंचाई कम होती है, वो 30 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसमें फूल मिक्स तरह के भी आते हैं, चित्तीदार टाइप के भी फूल आते हैं। तो आपको जो पसंद हो आप उसका चुनाव कर सकते हैं।
1: जी आरती जी, थोड़ी सी इसकी लगाने की विधि आप हमारे किसान भाइयों को बता
0: जी। जी, तो ये जो गेंदा की जो किस्मों की मैं बात की, तो उनका आप बीज अगर लेते हैं, तो बीज अगर ले रहे हैं तो उनको आप विधि तो है बीज के द्वारा लगाइए या उसका जो कर्तन, जो कर्तन विधि के द्वारा उसको हम लोग लगाते हैं। तो अगर हम बीज के द्वारा लगाते हैं तो बीज के द्वारा लगाया गया जो भी पौधा होता है उसमें काफी वेरिएशन भी देखने को मिलता है। कुछ पौधे लंबे हो जाते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं, कुछ में फूलों का आकार बड़ा हो जाता है, कुछ छोटा हो जाता है, तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कर्तन विधि अथवा जो पौधे की जो ऊंचाई पे जो टहनी रहती है उसको हम लोग तोड़ करके अगर हम लोग उसको बालू में लेकर के लगाते हैं, उसमें जड़ हम लोग निकाल करके अगर उसको हम लोग रोपण में लाते हैं, तो उस तरह के पौधे चूंकि मातृ पौधे की तरह होते हैं तो उसमें आपको वेरिएशन कम मिलेगा और वो हूबहु अपने मातृ पौधे के समान ही आपको फूल देंगे। तो दोनों विधि ही अच्छी हैं। तो इसमें किसान भाई अपना जिस विधि से वो करना चाहे कर सकते हैं। तो इसमें पौधशाला बनाना या नर्सरी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए कि वो पानी के नजदीक जो जगह हो उसका हम लोग चुनाव कर ले। उसकी जो चौड़ाई है वो 1 मीटर से 1.25 मीटर रखें और जो लंबाई है वो आप अपने इच्छा अनुसार या जितना आप पौधा लगाने जा रहे हैं उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। और उसकी मिट्टी को अच्छी तरह से कुड़ाई करके उसको कम से कम 15 से 10 सेंटीमीटर ऊंची उठा करके उसमें हम लोग मिट्टी को भुरभुरा कर लेंगे और उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद कम से कम 10 किलो अगर वो 6 वर्ग मीटर लंबी है तो उसमें लोग सड़ी हुई गोबर खाद डालकर मिलाने के बाद उसमें हम लोग जो बीज गिराएंगे वो पंक्ति में गिराएंगे और एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर हम लोग रख करके लगाएंगे और उसके ऊपर से फिर हम लोग बालू सहित मिट्टी का चूर्ण लेकर के ऊपर से बीज को ढक देंगे और उसके बाद उसमें पुआल से ढक करके उसमें शाम के समय पानी पटा देंगे और इसी तरह से रोज हम लोग उसमें पानी देते रहेंगे। तो करीब 25 से 30 दिन में आपका पौधा जो है लगाने लायक तैयार हो जाएगा। उसमें कम से कम 3-4 पत्तियां आ जाएंगी और उसकी जो लंबाई रहेगी 8 सेंटीमीटर होगी। तो ये इस तरह से हम उसका पौधा तैयार कर सकते हैं। तो पौधा तैयार करने के बाद बात होती है मुख्य भूमि में लगाने के लिए। तो मुख्य भूमि में जब हम लोग लगाएंगे तो उसमें जो है कि प्रति हेक्टेयर जो खाद या उर्वरक की जो जरूरत होती है उसमें है सड़ी हुई गोबर की खाद वो कम से कम 250 या 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मतलब 6.5 एकड़ 6.5 बीघा के हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 2.5 एकड़ या 6.5 बीघा में हम लोग लेंगे 250 से लेकर 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर खाद और उसमें 229 किलोग्राम यूरिया लेंगे और उसमें जो डीएपी लेंगे वो 174 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और 134 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग उसमें पोटास लेंगे। और इनमें क्या है कि हम लोग डीएपी और पोटास को शुरू में जब लगाते हैं तो पंक्ति में उसको गिरा देंगे और उसके बाद हम लोग उसमें पौधा लगाएंगे। लेकिन यूरिया को हम लोग 25 दिन में पहला हम लोग उसका भुरकाव करेंगे और दूसरा भुरकाव हम लोग 40 दिन के अंतराल पे करेंगे। तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी महत्वपूर्ण है। इसमें अगर हम लोग अफ्रीकन गेंदा लगाते हैं तो उसमें आपका पंक्ति से जो पंक्ति का दूरी और पौधे से पौधे का दूरी है वो 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति 30 और पौधे से पौधे 30। अगर हम वहीं पे अगर हम फ्रेंच गेंदा लगाते हैं तो उसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी हम लोग रख सकते हैं पौधा से पौधा और पंक्ति से पंक्ति की दूरी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि उसमें पिंचिंग करना, जो उसमें कर्तन जो करते हैं वो कम से कम 40 लगाने के 40 दिन के बाद हम लोग को कर लेना चाहिए, जिससे कि उसमें डाली काफी आती है और उसमें जितना डाली आएगा उतना ही फूल आप ले सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है। बीच में निकाय गुड़ाई, खरपतवार की निकाय गुड़ाई, सिंचाई वो करते रहना चाहिए। तो इस विधि से आप करेंगे तो अगर आप अभी जनवरी फरवरी में नर्सरी करने का समय है तो ये अगर जनवरी फरवरी फरवरी में आप नर्सरी करके पौधे को लगाते हैं, जनवरी में अगर नर्सरी करके फरवरी में लगाते हैं तो वो मई के मध्य तक आप उसका

0: पहला तुड़ाई करने लगेंगे तो उसका फिर तुड़ाई करते करते उसका 5-6-7 तुड़ाई भी आप कर सकते हैं। आप उसमें जिस तरह से खाद पानी खरपतवार का निकाय गुराई करेंगे तो उस तरह से होगा। तो वो अभी जो है अभी जो लगेगा जनवरी फरवरी वो गर्मा फसल है। उसके बाद बरसात में जो लगाएंगे वो जून जुलाई में लगाएंगे, जून या जुलाई में हम लोग बिचड़ा तैयार करेंगे और जो हम लोग जाड़ा वाला करेंगे वो सितंबर अक्टूबर में करेंगे। तो ये साल भर हम गेंदा के फूल की खेती कर सकते हैं,
1: सालों भर कर सकते हैं। अच्छा, एक बार पौधे लगाने से कितनी तुड़ाई हम लोग कर सकते हैं?
0: एक बार हम लोग पौधे लगाने से कम 7-8 बार हम लोग उसकी तुड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बाद में भी ले सकते हैं लेकिन उसका जो है साइज है उसका आकार प्रकार थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बदल हो जाता है।
1: अरुणा जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, आरती जी, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी बातें किसान भाइयों के लिए सरकार कुछ कर रही है क्या फूलों की खेती के लिए?
0: जी सरकार उसके लिए बहुत ही कोशिश कर रही है कि किसान भाई अन्य फसलों के साथ में जो खेती में विविधता लाएं और उसके लिए फूलों की खेती को भी अपनाएं, क्योंकि अभी भी हम जो फूलों की जो मांग है उसको हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे राज्य में तो अगर कहा जाए तो नहीं के बराबर, 2000 के करीब का जो डाटा है उसके अनुसार करीब 25 लाख हेक्टेयर भूमि पे झारखंड में खेती होती है, उसमें मात्र 0.25 जो है लाख हेक्टेयर भूमि उस पे आपकी फूलों की खेती होती है, तो ये काफी कम है। तो अभी इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं और जिला उद्यान पदाधिकारी के द्वारा भी कुछ स्कीम का संपादन किया जा रहा है जिसमें लोगों को फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान में उनको कुछ प्रशिक्षण के साथ साथ में उनको खेती करवाने के लिए उनको बीज और अन्य चीजों की उपलब्धता कराई जा रही है।
1: सरकार प्रोत्साहित कर रही है।
0: साथ ही साथ पूर्वी सिंहभूम के एक गांव को चुना गया है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत और वहां के जो किसान क्लब है उनको फूलों की खेती के लिए प्रशिक्षण भी कृषि विज्ञान केंद्र में दिया गया था और उसके बाद अब वो लोग फूलों की खेती के लिए नर्सरी और पौधशाला प्रबंधन का काम शुरू कर दिए हैं। तो आने वाले दिनों में मैं समझती हूँ कि हमारे प्रक्षेत्र में ही नहीं वो झारखंड में भी इस तरह के व्यवसाय को व्यवसायिक रूप दिया जाएगा और जो अभी हम लोग खुले तौर पे कर रहे हैं वो ना हो करके उसको हम लोग जो आपका पोली हाउस है, ग्रीन हाउस है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के भी फूल की खेती के लिए यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, उसकी ओर भी हम लोग आकर्षित हो सकते हैं।
1: जी आरती जी, आपने सारी बातें बता दी, खाद बीज और कैसे लगाया जाए। अब अंत में मेरा एक सवाल है कि इसमें कीड़े भी तो लगते होंगे, तो इससे बचाव के लिए हमारे किसान भाई क्या करेंगे?
0: गेंदा के फूल में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो रोग लगता है उसमें हम लोग देखेंगे कि बीच में जो फूल की पंखुड़ियां हैं उसमें धब्बे धब्बे भूरे भूरे आ जाते हैं, जिससे बाजार में इसकी जो जो इसका जो मूल्य है वो घट जाता है,
1: गुणवत्ता
0: घट जाती है, कम हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए हम डायथेन M45 का छिड़काव कर सकते हैं, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसको हम लोग छिड़काव करते हैं तो इस तरह के दाग धब्बों से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। और उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू जो सफेद उसमें जो दाग आ जाते हैं पौधों की पत्तियों के साथ में फूल में भी, तो उसको कम करने के लिए हम लोग कारथेन या तो गंधक युक्त जो भी दवा है उसको लेकर के हम लोग उसका 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। कीट में अगर हम लोग देखेंगे तो लीफ होपर और रेड स्पाइडर माइट का प्रकोप होता है जिससे पत्तियों जो कि पत्तियों का रस चूसकर खा लेती है या पत्तियों को काट देती है, इसके लिए किसान भाई मालाथियोन नामक दवा का छिड़काव कर सकते हैं जिसका 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो इनसे छुटकारा पाया जा सकता है।
1: जी आरती जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी फूलों की खेती के बारे में। हम समझते हैं हमारे किसान भाई इसे जरूर अपनाएंगे और एक अपनी कृषि में विविधता लाकर यहाँ फूलों की खेती करेंगे और अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे, साथ ही सरकार की जो सोच है उसमें भी वो सहायक भूमिका निभाएंगे। आपने अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद।
2: फूलों की खेती कर आमदनी बढ़ाएं, इस विषय पर जानकारी दे रही थी सुश्री आरती वीना एक्का और इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव मेहता।

कृषि जगत, ये था ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। इस समय शाम के 6:55 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: तीन महीने में पैसे डबल,
2: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।
1: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ
3: और कल होगा भी नहीं।
1: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
4: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
1: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे।
3: और फास्ट रिटर्न से बच के
1: और फास्ट बॉलिंग से भी।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया जी रामजी मिशन। 1 जुलाई से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार। राज्यपाल ने सस्टेनेबल माइनिंग पर दिया जोर। वैज्ञानिकों से तकनीक को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का किया आह्वान। रामगढ़ के पतरातू में राज्य स्तरीय इन्फ्लुएंसर्स मीट का आयोजन। पर्यटन मंत्री ने कहा, डिजिटल माध्यमों से देश दुनिया में बढ़ेगी झारखंड की पहचान। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में खरीफ कर्मशाला शुरू। कम बारिश के अनुमान के बीच वैज्ञानिकों ने किसानों को दी खास सलाह। और अगले कुछ घंटों में रांची समेत कई जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और वज्रपात की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी मिशन को अधिसूचित कर दिया है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। इस नए अधिनियम के तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान कोल प्रबंधन IICM में सतत खनन और पारिस्थितिकी बहाली पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के साथ जिम्मेदार खनन की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान राज्यपाल ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पोखरण परमाणु परीक्षण और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी याद किया। नक्सल मुक्त होने के बाद अब गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ विकास की राह पर है। राज्य की गृह सचिव वंदना दादेल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 14 मई को इस क्षेत्र का दौरा करेंगी। वे बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट योजना की समीक्षा और नई परियोजनाओं को लागू करने के लिए बैठक करेंगी। प्रशासन इस महत्वपूर्ण दौरे की तैयारियों में जुट गया है।
2: बूढ़ा पहाड़ को लेकर आज उसकी विकास परियोजना की बैठक करी गई और गांववार हम लोगों ने सभी के लाभार्थी बढ़ाने का निर्देश दिया। पानी का भी कार्य किया गया है। कुछ अपर एरियाज हैं जहां पर ट्रैक्टर पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है, उस संबंध में भी हम लोगों ने सभी स्टेक होल्डर्स को कोऑर्डिनेट करते हुए जल्द से जल्द कार्य निपटाने का निर्देश दिया।
0: रामगढ़ के पतरातू लेक रिसोर्ट में आज झारखंड टूरिज्म स्टेट लेवल इन्फ्लुएंसर्स मीट 2026 का आयोजन हुआ। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार डिजिटल माध्यम से झारखंड पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है।
3: 2019 से लेकर 2026 तक में पतरातू में टूरिस्ट का फुटफॉल 3 गुना बढ़ चुका है। सरकार की नीतियां, प्रचार और प्रसार ने पतरातू को झारखंड के हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया है। बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें और भी दिखेंगी।
0: राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने रांची के करमटोली में 5 करोड़ की लागत वाले धुमकुड़िया भवन समेत 4 भवनों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन भवनों के निर्माण से जनजातीय संस्कृति संरक्षित होगी और आदिवासी बच्चों को शिक्षा तथा कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेंगे। जामताड़ा में आज आदिवासी पारंपरिक वाद्य यंत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जिले के कला केंद्रों और धुमकड़िया भवनों के लिए ढोल, नगाड़ा और मांदर जैसे वाद्य यंत्रों का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने तथा नई पीढ़ी तक पहुंचाने की अपील की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के वर्तमान घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयीय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील को दोहराया।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक देशभक्ति की अपील का गिरिडीह में व्यापक स्वागत हुआ। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी सहित स्थानीय व्यवसायी और प्रबुद्ध नागरिकों ने जनता से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और एक साल तक सोना न खरीदने का आग्रह किया है।
5: विदेश मुद्रा का संकट तेल के और सोना के कारण जो आया हुआ है, उस परिस्थिति में मोदी जी के आह्वान किया है कि हमें विदेशी यात्रा और सोना खरीदना, उस तरीके की चीजें करना जो विदेश मुद्रा को कम करती है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं
0: रांची के कोकर से 18 माह की बच्ची के लापता होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस प्रशासन को बच्ची की सकुशल बरामदगी के लिए 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।
6: झारखंड राज्य में पुलिसिया तंत्र बिल्कुल खत्म है। एक निहायत गरीब परिवार का बच्चा 18 महीने जिसकी आयु हो, बहुत बच्चे का जिस प्रकार से अपहरण किया गया है, आखिर अपराधियों की साहस कैसे हो गए। आज खुलेआम तौर पर ये माइक ऑन करके प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि 36 घंटे के अंदर उस नाबालिग बच्चे को माँ बाप को सुपुर्द करने का काम करे।
0: जमशेदपुर के एग्रीको में टाटा स्टील के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने अपनी पत्नी बेटे और गर्भवती बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी रविंद्र सिंह रात भर शवों के साथ घर में रहा और सुबह खुद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला शुरू हुई। मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष 30% कम बारिश के अनुमान को देखते हुए वैज्ञानिकों ने किसानों को कम सिंचाई वाली फसलें उगाने की सलाह दी है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान विभाग के निदेशक PK सिंह समेत अन्य विशेषज्ञों ने किसानों से अपील की है कि वे समय से पूर्व गहरी जुताई करें ताकि अल्पवृष्टि में भी बेहतर पैदावार हो सके।
7: हम लोग किसान भाई को सलाह देना चाहते हैं 120 दिन के वैरायटी को जाएं, अगर निचले जमीन में है ज़्यादा दिन मॉइस्चर रहता है तो 140 दिन के वैरायटी के जाएं, और खास करके जो ऊपरी जमीन में जो किसान भाई खेती करते हैं चाहे ऊपरी से थोड़ा नीचे वाले जमीन में धान लगाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें जो सूखा अवरोधी जो फसलें होती है, मड़ुआ होता है, उड़द होता है, अरहर होता है, उसकी हम लोग खेती करें।
0: और मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और धनबाद सहित कई जिलों में अगले 24 घंटों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका व्यक्त की है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। पिछले 24 घंटों में रांची में सबसे अधिक 46 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 16 मई तक मौसम का मिजाज बदले रहने की संभावना जताई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया जी रामजी मिशन। 1 जुलाई से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार। राज्यपाल ने सस्टेनेबल माइनिंग पर दिया जोर। वैज्ञानिकों से तकनीक को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का किया आह्वान। रामगढ़ के पतरातू में राज्य स्तरीय इन्फ्लुएंसर्स मीट का आयोजन। पर्यटन मंत्री ने कहा डिजिटल माध्यमों से देश दुनिया में बढ़ेगी झारखंड की पहचान। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में खरीफ कर्मशाला शुरू। कम बारिश के अनुमान के बीच वैज्ञानिकों ने किसानों को दी खास सलाह। और अगले कुछ घंटों में रांची समेत कई जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक

0: समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की यात्री,
2: आई एम हियर।
3: बीप, तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
9: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रचंड जीत और नई सरकार के गठन पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। कोडरमा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडाराज का अंत हो गया है और भाजपा सरकार के गठन के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है।
2: इस तरह से टीएमसी के गुंडा राज के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर लगातार उन पर हमला करते रहे, बहुत प्रताड़ित किया, उसके बावजूद पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल डटे रहे। वो लगातार, चाहे पंचायत चुनाव रहा हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, चुनाव के बाद हमेशा हिंसा होता रहा। टीएमसी के लोग थे, उनके द्वारा गुंडागर्दी कर लोगों को परेशान करते रहे, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के कार्यकर्ता पेशेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डटे रहे। वो इस इंतजार में कि सरकार हमारी बनेगी।
1: जनगणना 2027 को लेकर कोडरमा जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 15 मई तक ऑनलाइन स्वगणना का कार्य किया जा सकता है, जबकि 16 मई से भौतिक रूप से प्रगणक मकान सूचीकरण और गणना कार्य को अंजाम देंगे। इसे लेकर जिले में 9 चार्ज बनाए गए हैं और 270 पर्यवेक्षकों के अलावे 1539 प्रगणों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने आम लोगों से भी जनगणना की वेबसाइट पर जाकर स्वगणना करने की अपील की है।
3: ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र मिलाकर कुल 9 चार्ज बनाए गए हैं, जिसमें अधिकारी संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के लिए वहां के प्रशासनिक पदाधिकारी अधिसूचित हैं। इसमें से जनगणना 2027 के माध्यम में 34 क्वेश्चन है, जिसमें से 30 प्रश्नों का जो भी गणना करेंगे उनको आपके माध्यम से और पोर्टल के माध्यम से 30 सवाल भरने पड़ेंगे। 1 मई से 15 मई तक हम लोग का जो फेज 1 का पहला चरण चलेगा, उसमें वो लोग उस गणना कर सकते हैं। जो नहीं ऑनलाइन करेंगे उसमें हमारे प्रगणक घर घर जाके जो 34 सवाल है उनको पूछेंगे और उनका जानकारी भरेंगे। मेरी सभी से ये अपील है कि मैक्सिमम लोग ऑनलाइन भरें।
1: गर्मी के शुरुआत के साथ ही कई इलाकों में जल संकट गहराने लगा है। खासकर जंगली इलाकों में निवास करने वाले आदिवासी और आदिम जनजाति परिवारों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। गजंडी और बेंदी के जंगली इलाकों के अलावे मरकच्चो प्रखंड के डगरनवा पंचायत के कारी पहाड़ी और ललकी माटी टोला में निवास करने वाले आदिवासी परिवार चुआ खोद कर पानी पीने को विवश है।
4: हम लोग का है पानी के लिए सुविधा नहीं है सर, प्लस में हम लोग का लाइट के लिए बिजली नहीं है। बहुत दूर से 1 किलोमीटर से पानी लाते हैं, माथा से चुआ खड़ करके माथा से धो करके लाते। गर्मी बहुत सारा दिक्कत है, अभी तो ताजा पानी कल परसों गिरा हुआ है, इसलिए हम लोग को थोड़ा राहत मिला है। नहीं तो हम लोग इतना मजबूर है जो की पानी पीने के लिए बहुत परेशान है।
5: क्या चाहते हैं
4: सरकार से? चाहते हैं ये हम लोग को पानी चाहिए।
1: इन इलाकों में रहने वाले आदिवासी परिवारों को पानी लाने के लिए भी अपने घर से 1 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
0: अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर। प्रस्तुत है बंगला प्रेमी श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक बंगला कार्यक्रम।

ये था बंगला प्रेमी श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक बंगला कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। प्रस्तुत है बुजुर्गों के लिए हमारा कार्यक्रम हमारे अपने।

0: श्रोताओं, वृद्धावस्था हमारे जीवन का वो पड़ाव है जहां हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। इस पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है जिसे मैं आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। उनकी उम्र लगभग 75 साल थी। पहले वो बहुत सक्रिय और खुश मिजाज थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उनका ध्यान अपने स्वास्थ्य और जीवन शैली से हटने लगा। वे समय पर खाना नहीं खाते, दवाइयाँ भूल जाते और अकेलापन महसूस करते थे। उनका बेटा शहर में नौकरी करता था और बहू घर के कामों में व्यस्त रहती थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन वे अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े। डॉक्टर ने बताया कि ये सब लापरवाही और नियमित देखभाल न करने का परिणाम है। उस घटना के बाद परिवार ने समझा कि वृद्धावस्था में सबसे जरूरी है ध्यान और देखभाल। बेटे ने अपने काम के साथ समय निकालकर पिता के साथ बैठना शुरू किया। बहू ने भी उनके खाने पीने और दवाइयों का पूरा ध्यान रखा। साथ ही उन्होंने उस बुजुर्ग को रोज सुबह टहलने और हल्का व्यायाम करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी और उनका मन भी खुश रहने लगा। अब वे गांव के बच्चों को कहानियां सुनाते और अपने अनुभव साझा करते थे। इस कहानी से ये बात सामने आती है कि वृद्धावस्था में सिर्फ दवाइयां ही नहीं बल्कि प्यार, समय और ध्यान भी उतना ही जरूरी होता है। परिवार का साथ और नियमित देखभाल बुजुर्गों के जीवन को सुखद और स्वस्थ बना सकता है। तो वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल कैसे की जाए, आइए इन सब पर विशेष जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर निवेदिता मिश्रा से। श्रोताओं, हमारे जीवन की कई अवस्थाओं में से एक है वृद्धावस्था, और इस अवस्था में क्रियात्मकता कम होने की वजह से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पर बुजुर्ग अपने शरीर के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। उनका मानना होता है कि इस उम्र में फिट रहकर वे क्या करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि लापरवाही से न सिर्फ उन्हें स्वयं परेशानी होती है बल्कि परिवार को भी परेशानी उठानी पड़ती है। वृद्धावस्था में स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत आवश्यक है कि इस बात की जानकारी हो कि बुजुर्गों को कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनसे कैसे बचा जाए और इन रोगों से पीड़ित होने की स्थिति में क्या कुछ किया जाए, यानी स्वास्थ्य की देखभाल कैसे किया जाए। तो आइए इन सब से संबंधित जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर निवेदिता मिश्रा से। तो डॉक्टर निवेदिता, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बुजुर्गों में स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं।
1: यह बिल्कुल सही बात है कि उम्र बढ़ने के कारण आपके शरीर के अंग भी धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं। इसका परिणाम स्वरूप वृद्धावस्था में कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजिंग के अनुसार 92% के करीब बुजुर्गों को कम से कम एक बीमारी है जो लंबे समय से जारी है, और 77% को कम से कम दो बीमारियां हैं। जो बीमारियां ज्यादातर देखने को मिलता है बुजुर्गों में, एक है हृदय रोग, दूसरा है मधुमेह या डायबिटीज, कभी कभी मौसम का हिसाब से डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है, और पेट की समस्याएं जैसी कब्ज, गैस आदि, और हड्डी और जोड़ों का संबंधित विकार बहुत ही कॉमन है, और ये सब छोड़ के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं।
0: अच्छा डॉक्टर, वृद्धावस्था में जोड़ों का दर्द सामान्य सी बात हो गई है, तो क्या ऐसा करें कि इससे बचा जा सके, या फिर अगर दर्द है भी तो इससे राहत कैसे महसूस हो?
1: बुजुर्गों में प्राय हड्डी और जोड़ों में ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन है, और इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और मांसपेशियों में दर्द, ये सब भी हो सकता है। आर्थराइटिस 65 साल या उससे अधिक उम्र सभी लोगों में लगभग सबको थोड़ा बहुत प्रभावित करता है। हड्डियों और जोड़ों से संबंधित विकारों से जीवन की गुणवत्ता पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपकी दैनिक गतिविधियाँ इससे काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, और इससे बचने के लिए ये सब हमारी लाइफस्टाइल दैनिक गतिविधियों में ये सब चीज़ हम लोग शामिल करने चाहिए, जैसे कि अपना गतिविधियों को सीमा के भीतर ही, निर्दिष्ट सीमा के अंदर ही रखना है जहाँ तक आपका शरीर उसको अलाउ करे
0: जी।
1: और पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ लेने से ये पोषक तत्वों की कमी नहीं होना चाहिए और अच्छा। सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में शरीर में पड़ना चाहिए और दैनिक आहार में विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थ जैसा मेवा, सीड्स और फैट युक्त मछलियाँ जिसमें विटामिन डी आदि मिल सकता है, ये सब चीजें शामिल करना चाहिए।
0: अच्छा।
1: और डॉक्टर अगर सलाह देते हैं तो आर्थराइटिस या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये सब के लिए जांच करवाना जरूरी है।
0: अच्छा।
1: और सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेना है, जैसे बाथरूम में गिरना या चलते वक्त सीढ़ी से गिरना, ये इससे बिल्कुल बच के रहना है क्योंकि एक बार गिर के फ्रैक्चर होना बहुत आम बात होता है एंड उसके बाद धीरे धीरे जो है आदमी का चलना फिरना बंद होने के बाद में तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसलिए
0: अच्छा।
1: गिरने से बिल्कुल बच के रहना है।
0: अच्छा अच्छा बुजुर्गों में अक्सर बदहजमी, गैस, कब्ज आदि की भी शिकायत देखने को मिलती है, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए?
1: कब्ज तो बुजुर्गों में बहुत ही कॉमन है क्योंकि पेट भरा हुआ महसूस होता है
0: जी।
1: इसका तत्काल कोई गंभीर प्रभाव नहीं होता है लेकिन क्योंकि वो बार बार और लंबे समय तक जारी रहता है इसीलिए इससे इन लोगों को काफी तकलीफ होता है, जैसे अपच, मतली होना, पेट दर्द, ये सब भी उससे समस्याओं को जन्म देता है। इसका प्रमुख कारण है शारीरिक गतिविधि का कम हो जाना, ज्यादा मूवमेंट नहीं होना और डाइट में खाने में फाइबर की कमी।
0: अच्छा।
1: तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग को अधिक मात्रा से फाइबर अपना डाइट में लेना चाहिए, जैसे फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और हाइड्रेशन प्रॉपर रहना चाहिए, जैसे नियमित पानी सफिशियंट लेना चाहिए और नियमित व्यायाम करने से भी कब्ज की बीमारी कुछ कुछ कंट्रोल में रहता है।
0: अच्छा।
1: और अगर ये सब के बाद भी आपका इम्प्रूव नहीं होता है तब फिर आपको डॉक्टर की या विशेषज्ञ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की हेल्प लेना पड़ सकता है।
0: अच्छा अच्छा डॉक्टर, ऐसा भी देखा गया है कि मौसम जब बदलता है तो बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ज्यादा असर पड़ता है, तो ऐसे में उन्हें क्या परहेज करना चाहिए? कई बार बुजुर्ग मौसम की वजह से निमोनिया के भी शिकार हो जाते हैं, कई बार उन्हें डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, तो ऐसे में क्या उन्हें परहेज करनी चाहिए?
1: हाँ, जैसे कि आपने सही कहा, जैसा कि गर्मी, आजकल धीरे धीरे गर्मी की मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है तो इस समय डिहाइड्रेशन होने का, इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम होने का बुजुर्गों में ज्यादा मात्रा में देखा जाता है क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो जाती है और तरल पदार्थ भी, पानी चाहे अन्य कोई भी तरल पदार्थ को सफिशियंट मात्रा में शरीर में नहीं लेने से इसमें अनेक गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती है, जैसे सोडियम की कमी हो जाती है, पोटासियम की कमी हो जाती है, तो उससे लोग का धीरे धीरे सेंस कम हो जाने लगता है और प्लस उल्टी भी होने का चांस बढ़ जाता है। तो दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी गर्मी के समय जरूर पीना चाहिए और जैसे बहुत ज्यादा ठंड या बारिश का मौसम में अपने आप को बचा के चलना है, हल्का उसम पानी में नहाना, चाहे बारिश में नहीं भींगना, तो ये सब करने से निमोनिया से आदमी बच सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा डॉक्टर, कौन से ऐसे रोग हैं जो बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलते हैं?
1: जैसे कि हृदय रोग भी बहुत कॉमन हो जाता है जैसे उम्र बढ़ता है, मधुमेह भी काफी फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है और हड्डी और जोड़ों के रोग कॉमन हो जाता है, और ये सब छोड़ के कोई अगर, कभी कभी ऐसा भी होता है जिसका ऊपर से कोई सिम्टम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आदमी का भूख कम होते जा रहा है, वजन कम होते जा रहा है, उससे हम लोग उम्र बढ़ने से हम लोग हमेशा मैलिग्नेंसी या कैंसर का भी एक डाउट डॉक्टर लोग करते हैं, तो उसके लिए भी काफी जांच करना पड़ता है।
0: अच्छा।
1: तो ये सब चीज पे ध्यान रखना है।
0: अच्छा अच्छा डॉक्टर निवेदिता, कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत से बुजुर्ग जो हैं वो अकेलापन के शिकार हो जाते हैं, यानी घर में उनके पास वैसा कोई काम नहीं रहता है जिसमें वो अपने आप को व्यस्त कर सकें, या फिर परिवार के लोग उतना साथ नहीं बैठते हैं, तो ऐसे में उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे गिरता चला जाता है, तो उससे भी शारीरिक परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती है। तो मानसिक स्वास्थ्य बुजुर्ग कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें?
1: शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक स्वास्थ्य भी उम्र के साथ बिगड़ने लगता है। इसी वजह से 60 या उससे अधिक उम्र के कम से कम 15% लोग एक ना एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति से प्रभावित रहते हैं, जैसे कि अल्जाइमर, डिप्रेशन या अवसाद, एंजाइटी या बेचैनी, ये सब होने का संभावना बढ़ जाता है। तो इससे निपटने के लिए एक अनुकूल दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, और जैसे सबको हम लोग सुझाव देते हैं कि पड़ोसियाँ, परिवार, मित्रों के साथ जुड़े रहना है। अगर आप अपने प्रियजनों के आसपास नहीं हो सकते हैं तो वर्चुअल कांटेक्ट, जैसे कि मोबाइल में हुआ, वीडियो कॉल में हुआ या मैसेज हुआ,
0: जी
1: सबका कांटेक्ट में रहना है। कोई कोई एक पालतू जानवर रखने के लिए भी एडवाइस दिया जाता है, बागवानी या गार्डनिंग, बुनाई, निटिंग, मिट्टी के बर्तन बनाने, ऐसे कोई एक नया शौक को अपनाना
0: अच्छा,
1: चाहिए
0: यानी
1: जिससे
0: व्यस्त
1: कि
0: रहना चाहिए
1: माइंड
0: हमें।
1: क्रिएटिविटी भी बढ़ेगा,
0: जी
1: और कोई भी एहसासों और भावनाओं को अगर आपको डिप्रेशन के तरफ ले जा रहा है तो एक डायरी में ये सब लिखने से आपको हो सकता है उससे बाहर निकलना थोड़ा आसान हो।
0: तो डॉक्टर, अब समय की सीमा है, हम ये बातचीत यहीं खत्म करना चाहेंगे। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल, इस विषय पर आज आपने बहुत ही अच्छी और उपयोगी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हमारे अपने का ये अंक आज यहीं तक। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय। तो फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए शिखा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: हमारे अपने, ये था बुजुर्गों के लिए हमारा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
3: हेलो डॉक्टर,
4: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
3: हेलो डॉक्टर,
4: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
5: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
6: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
5: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
6: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म हत्या का गीत, जिसे लिखा था अनजान ने, धुन बनाई थी बापी लहरी ने। आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में फिल्म रंग का ये गीत। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

जीना बनना तेरा तेरे संग। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की। गीतकार थे समीर, संगीत था दिलीप सेन, समीर सेन का। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में फिल्म कल की आवाज का ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।

उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म गर्व प्राइड एंड ऑनर का ये गीत, जिसे लिखा था शबीर अहमद ने, धुन बनाई थी साजिद वाजिद ने।

हम हैं राही प्यार के। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। गीतकार थे समीर, संगीत था नदीम श्रवण का। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार संध्या आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में NDA का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: For the season of Kharif 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
4: अवेलेबिलिटी आफ्टर द क्राइसिस सिचुएशन।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत एक अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60-day stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
7: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
6: प्राइम मिनिस्टर मोदी said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
7: Petrol, diesel ka upyog kam karein, metro ka upyog karein, electric bus aur public transport ka adhik istemal karein, carpooling ko badhawa dein. Ye jaruri hai ki sarkari aur private dono hi daftaron mein virtual meeting aur work from home ko prathmikta di jaye. Main kuch schoolon se bhi aagrah karunga ki kuch samay ke liye online classes ki vyavastha par kaam kare. Main aap sab se aagrah karunga ki jab tak halaat samanya na ho hum sone ki khareed ko taale.
6: Sardar Dham Hostel in Vadodara includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls, along with amenities like a central dining hall, library and auditorium. Mr. Modi also visited various facilities at the Sardar Dham complex, including the reception area, civil amenities, dining area and e-library. Earlier in the day, Prime Minister Modi took part in the Somnath Amrit Mahotsav, marking 75 years since the inauguration of the restored temple in Gujarat dedicated to Lord Shiv. Mr. Modi performed Mahapuja followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the celebrations. In a social media post after the visit to the temple, the Prime Minister said, "Somnath Temple stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion." He said a thousand years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi added, the doors of the newly rebuilt Somnath Temple opened in 1951 in the presence of the then President Dr. Rajendra Prasad, proclaiming to the world that while the attackers have faded into the dust of history, the soul of Bharat endures. The government today informed that there is no shortage of any petroleum products in the country, and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas and 45 days of LPG. This was informed during the fifth meeting of the informal group of ministers on West Asia, chaired by Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi. The meeting took stock of the latest developments in the conflict and discussed ways to bolster country's readiness to ensure its minimum effect on the people. India is among the few countries where petroleum prices have held steady throughout this period of global volatility, even after more than 70 days since the conflict started. During the meeting, it was informed that the foreign exchange reserves stand at a comfortable $703 billion. The government said the supply management has been good and the people need not panic or resort to overpurchase of fuel and other products. During the meeting, Defence Minister Rajnath Singh directed the officials to take concrete steps to implement Prime Minister Modi's 7-point appeal at the ground level. The meeting was attended by Union Ministers J.P. Nadda, Ashwini Vaishnaw, Hardeep Singh Puri, Kiran Rijiju, K. Ramohan Naidu, Sarbanand Sonowal and Dr. Jitendra Singh. Meanwhile, the centre today said the stock of fertilisers in the country is more than 51% for the Kharif season 2026. Additional Secretary at the Ministry of Chemicals and Fertilisers, Aparna Sharma, stated this while addressing the inter-ministerial briefing on recent developments in West Asia in New Delhi today.
8: For the season of Kharif 2026, the stock is more than 51%. The fertilizer stock is comfortable and the MRP of major fertilizer remains very much the same. The domestic production and import of fertilizer after the crisis period has been 76.78 and the imports that have reached our shores is 19.94 LMT. So a total of 97 lakh metric ton of fertilizer has been added to the availability after the crisis situation.
6: Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas Sujata Sharma said the government is ensuring the supply of fuel to the consumers. She informed that over the past 3 days, 1 crore 14 lakh LPG cylinders have been delivered to households against the 1 crore 26 lakh bookings. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that India's food stock is abundant and there is no food shortage in the country. The minister said this while jointly launching the Science Excellence for Health through Agriculture Transformation Sehat Initiative alongside Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda in New Delhi. Mr. Chauhan said that the initiative will help in boosting the healthy lifestyle of the people. The centre has notified the implementation of the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act 2025. that is Viksit Bharat G. Ramji. The act will be rolled out nationwide from 1st of July this year. The Rural Development Ministry said that the act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower the rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. More from our correspondent.
9: The Viksit Bharat G. Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households. The act places strong emphasis on timely, transparent, and accountable wage payments. The new act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The Viksit Bharat G. Ramji Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of Viksit Bharat by 2047. With Deependra Kumar, Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. In Assam, preparations are in full swing for the swearing-in ceremony of BJP leader Hemanta Biswa Sarma as the Chief Minister for a second consecutive term tomorrow. The ceremony will be held in Guwahati. The swearing-in will mark the NDA's third consecutive term in Assam. Dr. Sarma today visited the venue to review the arrangements. Speaking to media, he said Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Naveen will attend the ceremony. Several Union Ministers and Chief Ministers of BJP-ruled states are also expected to be present. In West Bengal, the new government began its work today. Chief Minister Shubhendu Adhikari chaired the first cabinet meeting and also held administrative and law and order reviews at the State Secretariat. Our correspondent has the details.
10: Departments have been distributed among the five ministers of the government of West Bengal today. They took oath on 9th May along with Chief Minister Shubhendu Adhikari. In a major development, several central government schemes including Ayushman Bharat, Jal Jeevan Mission, Beti Bachao Beti Padhao have been given nod to be implemented in West Bengal. Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media within 45 days lands will be given to the Border Security Force for fencing along the Indo-Bangladesh border. The previous government under the TMC rule has not transferred the requisite land even after receiving fund from the central government. The new state government also informed no running welfare state government scheme will be stopped by the new government of West Bengal. Kollan Laha reporting from Kolkata.
6: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today recalled the achievements of 1998 Pokhran 2 nuclear tests on National Technology Day. Addressing a program on the occasion, the minister highlighted that in the last one decade, India's defence production has gone up by 174 times to 1.54 lakh crores.
11: In 2014, we had just 350 to 400 startups. Today, we have more than 2 lakh. We stand number 3 in the world ecosystem of startups. In just one decade, our defence production has gone up by 174 times to 1.54 lakh crore. And our defence export has gone up 34 times in just one decade, up to 23,600

0: पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: श्रोताओं, आपके मन में इससे संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331 0481 2371 7116 2371 7106 और 2331444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं।

0: अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
1: देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है, करीब करीब जो फायर होती है 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक बस, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी एसी ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती है घरों में जो होती है, वो दो तरह से लगती है मेनली। वन इज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पे ध्यान देंगे, तो मुझे ये लगता है कि फायर जो है काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब उसमें करीब करीब 60-70% का लोअर आ जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को, आप ये समझिए, अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट जब चलता है उसमें हीट जनरेट होती है, चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ चलाएं, तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो इस उसमें हीट जनरेट हो रही है, और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है, आप आज या नहीं तो कल जरूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी शुरू
0: हुई जी,
1: आग लगी और बहुत सारी आग भी एसी की ब्लास्ट होने के से लगी
0: जी।
1: उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई, बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ, वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा, तो उसमें आग लगने वाली है
0: जी। शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए
2: जी। नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश
0: जी।
2: और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है किस तरह से आग को पाया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो कई कई गाँव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं
0: जी,
2: लेकिन फायर पहुँचती नहीं है, तो अग्नि को कैसे किस तरह से जो है काबू किया जा सकता है।
0: प्रशांत, जंगल में आग एक गंभीर समस्या है।
3: नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए। ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज्यादा होता है, और साधारणतः जो हम जंगलों की आग जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पे आग बुझाते हैं, तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है। तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में, ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब ये है कि जहाँ पे आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पे आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहाँ पे कम्बस्टिबल मटेरियल ना हो, उसको साफ कर देते हैं, सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो, क्योंकि आग को बुझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है, तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पे जले और वहीं पे बुझाए। बाकी आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है तो उसमें एयर लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं, तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है। बट मेरा हमारा ये है कि आप उसको कन्फाइंड कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइंड करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है
0: जी। राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं जी। राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है।
4: नमस्कार जी, निगम जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं, तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? मैंने देखा है कि वहां पे 60-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है, तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे एमसीडी है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा, घबराहट में लोग अपनी ज्यादा जान दे देते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। नमस्कार
3: नमस्कार
0: जी। राकेश जी।

0: सुरेंद्र जी, आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, एसी हर घर में हर ऑफिस में लगा होता है, एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं, तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई हैं, वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी और आप कंटिन्यूस एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है और कोई भी अगर चीज़ आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं, बच्चे भी उसी सोते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है। फिर हम क्या होते हैं, दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी। तो हम क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी, वो इस लोड को लेने के काबिल है या नहीं है। अगर हमारा ट्रिप होता है तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है या एसी आवाज कर रहा है या बार बार कोई चिंगारी निकल रही, ये संकेत है कि आपकी वायरिंग खराब हो चुकी है, आपका लोड ज्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज कर रहे हो, आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीजों पे देना है, ना कि सबके साथ एसी चल रहे हैं उसका ध्यान देना है, क्योंकि एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
1: अतुल जी, ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि एसी अगर हम 2400 घंटे चला रहे हैं, तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की?
0: देखिए, ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत जगह मैंने कहा है कि आप एसी को 2 घंटे चलाइए और आप 10 मिनट के लिए भी बंद करते हैं, तो बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ता है उससे। उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। हमारे यहाँ वो क्या रहा है कि हमने एसी सुबह चला दिया, बच्चे उठे, चला दिया, 90 डिग्री कर दिया और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका एसी ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाजा खुल बनना, तो 90 डिग्री का भी टेम्परेचर अचीव नहीं होता और एसी का भी कट ऑफ होगा नहीं, तो आग लगने के चांस ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे चलाए, थोड़ा सा उसको रहते हैं, इवन 5 मिनट देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट एसी होगा, तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
1: रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी, सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है, पहला प्रश्न।
3: हाँ नमस्कार, रमाशंकर वाजपेयी जी नमस्कार। आपका सवाल जो है, बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे अभी हमारा जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का रखरखाव, आग के लिए बचाव का रखरखाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए हैं कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीज़ों का रखरखाव रखना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए। जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है, उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो आपका लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबिलाइजर्स आते हैं, MCBs आते हैं, RCBs आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है। और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है एसी में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है, तो वो ट्रिप कर देता है। तो ये इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है। बट प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि ये सारी चीज़ें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है, बट उसका रखरखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो मेंटेनेंस जो है उसका बहुत जरूरी है, और जो ऑक्युपायर है, जो हम लोग वहां रहते हैं, उनको ये चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं,

0: बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, पर आप कहीं भी वहां पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पर लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहां जाके पढ़ा आपने, तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम 2 एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए, और यह है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहां पे सामान रख दिया है या कोई लॉक कर दिया है या सिक्योरिटी रीजन से है। तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकास का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉकड्रिल की बात करते हैं, DFS, दिल्ली फायर सर्विस, कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉकड्रिल कंडक्ट करता है। तो मॉकड्रिल कंडक्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है कि मॉकड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर होना है,
1: क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे। हाँ। तो रास्ता साफ होना चाहिए और पैनिक नहीं, सबसे बड़ी।
0: हाँ, लिफ्ट से आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि होती है, दम घुटता है। तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज करना है।
1: दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
2: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। जैसे कि मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियां भी हैं, दुकानें भी हैं। तो मैं आपका ध्यान 2-3 बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है, कहीं एसी में लीकेज हो गए, कहीं कुछ और बात हो गई, कहीं तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियाँ होती हैं, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियाँ होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर बुझती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है MCD की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लगी थी।
1: धर्मवीर जी, सवाल हम समझ गए हैं।
2: सवाल यही कहना चाहूंगा,
1: हम समझ गए हैं प्रशांत
2: नहीं, लवलीन जी, जी आप बात पूरी होने दीजिए।
1: नहीं, आप 3 सवाल पूछे जी।
2: नहीं, अगर आपके, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता, फैक्ट्रियों में नहीं होता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद।
3: धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में एक हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हजारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड मैं गांधीनगर कई बार गया हूँ, गांधीनगर में हमें पहुंचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15-16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियां हैं, गाड़ियां पार्क होती हैं रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया
1: जी।
3: तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिल के अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूंगा, ज्यादातर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस की लग सकती है, किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहां हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहां बहुत छोटे छोटे ठेले भी लगे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सटिंग्विशर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता तो उन्होंने उस फायर एक्सटिंग्विशर को आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज्यादा नुकसान हो गया। तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं जो आप लोगों के लिए बने उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है मैं कह रहा हूँ, जहाँ बिजली के प्लग होते हैं वहाँ हम देखते हैं साड़ियाँ भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज़्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, कपड़े में आग लग जाएगी और आग फिर कपड़े में आग लगती है, बुझती नहीं है, गांठ होती है, आप पानी डालें, ये बहुत 24-24 घंटे लेती है, दो दो दिन लेती है
1: जी।
3: तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है, आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जैसे आपने कहा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ, मैंने देखा कि लगती है पर बहुत सारी आग को आप लोग खुद बुझा लेते हैं, तो क्योंकि वो दिन में लगी, आप लोग जागरूक थे, आप सचेत थे, आपने तुरंत बुझा ली। पर कई बार क्या होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, मीटर फट गया, आग बड़ी हो गई, तो आप नहीं बुझा पाते। तो अनलेस हम अपना जो प्रिकॉशन लें, हम लोग को, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल रिलैक्स कर दिया, 5 साल बाद दिल्ली फायर सर्विस जो इंस्पेक्शन करेगी।
1: जितनी देर फायर ब्रिगेड पहुंचे उतनी देर में अपना। विजय कुमार साहनी है महाराष्ट्र से।
4: स्वामी
1: जी, विजय जी नमस्कार।
4: हाँ, स्वागत है। दीदी नमस्ते।
1: नमस्कार, सवाल
4: पूछिए। हाँ, सर नमस्कार जी।
0: नमस्कार
4: जी। भाई विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गाँव बस्तवा तहसील चोर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से
1: जी।
0: नमस्कार विजय।
4: हाँ सर जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक इमारत को आग लग गई तो हमें शुरुआत क्या करना पड़ेगा, तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह क्या?
0: हाँ, विजय कुमार जी नमस्कार, कोल्हापुर से है आप, तो मैं आपको एक, आपका सवाल है कि अचानक अगर आग लगी तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है, जो लोग आसपास है उनको वहां से बाहर निकलना है। पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है। उसके बाद आपको, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके बाद जो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहां पे आप इमीडिएटली फोन कर दीजिए। और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं, बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है। उसके बाद जितना हो सकते हैं जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए, और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
1: और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बन के खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियां आ जाती हैं, सलाहें बहुत देती है, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके।
0: हाँ, ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी के जैसी घटनाएं होती है तो वहां पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहां पे काम आएगा। तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहां काम कर ले उनकी सुविधा दे, लोगों को जाने आने का रास्ता दे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको, जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर करना है, जैसे कहा कि आपके जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आप ये लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीजें, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसकी मार्किंग होनी चाहिए, आपको कहाँ जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है, या रेडियम मार्किंग लगते हैं, या फोर फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
1: श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
5: नमस्कार।
0: नमस्कार
5: जी, श्रीपाद जाखड़ो बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से
1: जी।
5: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मियों के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो अगर पानी की कमी है आजू बाजू में कोई कोई एरिया में कमी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, समझो पानी की कमी है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाए तो, मतलब
1: जी जी श्रीकांत जी, इन्होंने पानी पूछा, उसी को अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहाँ दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें?
0: उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक साल्वेज का कॉन्सेप्ट है। साल्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ पे जो जलने वाली चीज है, उसके आस पास में जो जलने वाली चीज है उसको वहां से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं, तो एक तरह से वो साल्वेज का ही तरीका है। तो वहां पे जो जलने की चीजें जितनी ज्यादा आप हो सकते हैं उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहां से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहां, फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी। वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट ऐसे वक्त में जलने की चीजें आपको दूर करनी चाहिए और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं। जी महेंद्र सिंह जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
6: लवली जी नमस्कार।
1: नमस्कार, सवाल पूछिए।
6: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।
6: सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से, गलती से और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं और उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए?
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्ट किए, दो नंबर है आप इनको याद रखें, 101 और 112। आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
1: जी।
3: और 112 पे भी जाएगा अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास आएगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में आग लग भी गई है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप सिलेंडर में अगर आग लग रही है, लीकेज नहीं है, तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जाके उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज। हम लोग कहीं कहते हैं, ऑल दो वो क्रूड मेथड है कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला, कोई गीला कपड़ा, तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है, और कोई बिजली का सामान, कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी
1: जी।
3: तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं उस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता, वो प्लास्टिक के, हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर हैं, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं, तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अपने जो जहाँ भी फायर ब्रिगेड मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर भी है, आप वहाँ चिट्ठी लिखें, वहाँ से कोई ना कोई जरूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा। तो आप अपने गांव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे सारी महिलाओं को, एनजीओ को भी यूज़ कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
1: इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया जाए?
3: नहीं, नंबर जो सबका एक ही है, 101 ही होता है। आप अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं।
0: मैं एक और चीज, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही है, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूँ कि पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सभी राज्यों को दिया गया है, तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो, ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो, और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में, तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
1: RWJ हो या कुछ भी,
0: हाँ कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग अवश्य मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
1: एक सवाल है, पानीपत से हैं ये शैलेंद्र शेंदुड़ कर रहे हैं शायद, ये बोल रहे हैं मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है, उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसे स्थिति में क्या कर सके। CNG की भी हम बात करें तो CNG वाहनों में बहुत आग लग रही है।
0: इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है, जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे अगर ऐसी गाड़ी में आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहाँ से निकल जाना है और उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही बुलाना है, क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए तो वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा, जितना हो सकते आपको दूर अपने आप को करना है और फायर ब्रिगेड को बुला के ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। और उसके उसमें यह है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जहां जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जो है कंपनीज अपनी अपनी देती है, उसको भी एक बार आपको समझना जरूरी है।
1: प्रमोद है जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं। जी प्रमोद नमस्कार, स्वागत।
7: हाँ जी नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो कोई सेंसर वगैरह भी ऐसा है आधुनिक युग में कि जो ऑटो कट हो जाए, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिस वगैरह है या मतलब शट डाउन करके वो वहां से निकले, आप प्लीज इसमें बताएं। और टेम्परेचर जो है एसी का जो है वो 18 के आसपास रखते हैं, अगर आगे आप टेम्परेचर बताएं।
1: जी जी हम जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है।
3: जी आपका सवाल बहुत वाजिब है, रात में आग लगती है और सबसे ज्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए इसीलिए ये MCB LCB ELCB का जो कंसेप्ट है, इसीलिए अगर ये आपने लगाया है शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा है नेचर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी, नंबर वन। नंबर दो, आपने एसी की बात कही, एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है एक दो घंटे बाद उसको बंद करना है,
1: तभी जी। प्रशांत जी रोकूंगी क्योंकि समय बहुत दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, और पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, फिलहाल नमस्कार।
0: नमस्कार।

FM 102.4 MHz पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

बरसात की एक रात, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर के, शब्द रचना आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अवतार का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

डॉन फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। अनजान के बोल थे, धुन बनाई थी आनंद जी कल्याण जी ने। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म जूली का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार राजेश रोशन।

तीन देवियाँ। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आवाज़ें थी आशा भोसले और किशोर कुमार के। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई थी SD बर्मन ने। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज सुनिए पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी वादन, राग है दीपावली।

अभी आप सुन रहे थे पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी वादन, राग था दीपावली, और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण

प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती आज की हमारी ये सभा। इसी आवृत्ति पर कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।